0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रह रो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713030।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: लाइ तैयार न आहे ईरान, आन वञण लाइ तैयार न आहे पर जल्द शिकस्त क़बूल कंदो। ईरान हुकूमत जो खज़ानो खाली आहे, हाणे मुआहिदो अमेरिका जे शर्तनि ते थींदो। मुआशी दबाव वधाइण जो मतिलबु इहो न आहे त हाणे ईरान ते हमलनि जो इम्कान ख़तम थी वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जॉइंट बेस खां ॾखण जे शहर मेटल बेस रवानगी खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त ईरान अमेरिका सां इख़्तिलाफ़नि बावजूद मुआहिदो करणु चाहे थो, पर तेहरान अञा ताईं सही मुआहिदे लाइ तयार न आहे। हाणे ॾिसणो पवंदो त सूरतयाल कहिड़ो रुख इख़्तियार करे थी। आबन हरमुज़ ऐं सामूंडी किनारनि वारे ज़मीनी रस्तनि ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। मुआहिदो थियण ताईं ईरानी नाकाबंदी जारी रहंदी। ईरान ते मुआशी पाबंदियुनि वारे पॉलिसियुनि खे बि नाकाम थींदे ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ी जे अमेरिकी मुआशी पाबंदी वारे फ़ैसिले ते तनक़ीद। ईरान खे धमकियूं पुराणियूं, चेहरा नवां आहिनि। ईरान ते 14 साल अॻु मड़ियल तारीख़ूं तबाहकुन पाबंदियूं बे नाकाम थियूं। 5 महीना अॻु ईरान खे गैर मशहूर तौर हथियार फिटा करण जी शर्त बे नाकाम थी। ईरानी परडेही वज़ीर आगाह अब्बास इराक़ी अमेरिकी धमकियुनि जे रदे अमल ते चयो आहे त ईरान ते मुआशी सभ खां वॾियूं पाबंदियूं बणियूं वयूं आहिनि पर उन्हनि जो नाकाम थियण तय आहे। पीटीआई बानी खे अलशफ़ा अस्पताल मुंतकिल करण बदिरां पिम्स मां तिबी मुआइनो कराए ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण ते हुकूमत ख़िलाफ़ तोहीन अदालती दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान। पीटीआई रोडनि रस्तनि ते एहतजाज करण सां गॾु क़ौमी असेंबलीअ तां इस्तीफ़ाउनि जी धमकियुनि बि ॾेई छॾी। 27 सेप्टेम्बर ते लॉन्ग मार्च वारो सर्वे बरक़रार। इस्लामाबाद में पीटीआई अपोज़िशन जे ॿियनि जमायतुनि जे घर इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻवाणनि चयो आहे त बानी पीटीआई खे शिफ़ा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमत अदालती फ़ैसिले सां गॾु आइन ऐं कानून जी बि तोहीन कई आहे। अॼु तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती अमल खां पोइ को जवाज़ नथो ठहे त असां हिन ऐवान में वेठल हुजूं। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। सलमान अकरम राजा चयो त हुकूमत शिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां हुजूम गॾु थियण वारो कूड़ो बयानो ठाहियो। हाणे फ़ैसिलो आवाम खे करणो आहे त हीउ केस अदालत में विढ़जे या रोडनि ते।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
8: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
9: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
8: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
10: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
11: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
12: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
12: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
12: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
11: 03125257 86।
12: जी हा 3135525786
11: GFM रेडियो नेटवर्क
12: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी, सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अक्सर मान जो सवाल तो असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तहां के वैक्सीन जे लाए उमर जी हद कोने कैम जगत वैक्सीन कैम उमर जे पोलियो लगी सके तो कैम उमर जे वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रुकेश आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

आहे की साइट एरिया में कपिड़े जी फैक्ट्रीअ खे लॻल बाहि ते ज़ाब्तो आणण जूं कोशिशूं जारी आहिनि। 10 फायर टेंडर्स बाहि विसाइण जी कोशिशुनि में रुधल आहिनि। चीफ फायर ऑफिसर जो चवण आहे त फैक्ट्री ताईं पहुचण जो रस्तो न हुजण सबबि ॾुखियाईयूं पेश अची रहियूं आहिनि। मुतासिर फैक्ट्री समेत भरपासे वारनि कंपनीज मां बि अमले खे ॿाहिरि कढियो वियो आहे। पाणी जी पोट पूरी करण लाइ वाटर टैंकर्स खां मदद वरिती पई वञे। फैक्ट्री खे बाहि लॻण जो कारण मालूम न थी सघियो।

ईरान वटि फ़ौज ऐं पुलिस खे पघार ॾियण जा पैसा ऐं विढ़ण लाइ हथियार न आहिनि। ईरान आन मञण लाइ तयार न आहे, पर जल्द शिकस्त क़बूल कंदो। ईरान हुकूमत जो खज़ानो ख़ाली आहे। हाणे मुआहिदो अमेरिका जे शर्तनि ते थींदो। मुआशी दबाव वधाइण जो मतिलब इहो न आहे त हाणे ईरान ते हमलनि जो इम्कान ख़तम थी वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ज्वाइंट बेस एंड खां ॾखण किरोलिना जे शहर मटेरियल बेंच रवानगीअ खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त ईरान अमेरिका सां इख़्तिलाफ़नि बावजूद मुआहिदो करणु चाहे थो, पर तेहरान अञा ताईं सही मुआहिदे लाइ तयार न आहे। हाणे ॾिसणो पवंदो सूरत हाल कहिड़ो रुख इख़्तियार करे थी। आबना हरमुज़ ऐं समुंडी किनारनि वारे समूरी ज़मीनी रस्तनि ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। मुआहिदो थियण ताईं ईरानी नाकाबंदी जारी रहंदी।

0: ईरान ते मुआशी पाबंदियुनि वारी पॉलिसी बि नाकाम थींदी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ी जी अमरीकी मुआशी पाबंदी वारे फ़ैसिले ते तनक़ीद। ईरान खे धमकियूं पुराणियूं, चेहरा नवां आहिनि। ईरान ते 14 साल अॻु मरियल तारीख़ जूं तबाहकुन पाबंदियूं बि नाकाम थियूं। 5 महीना अॻु ईरान खे गैर मशरूत तौर हथियार फिटा करण जी शर्त बि नाकाम थी। ईरानी परडेही वज़ीर आगा अब्बास इराक़ी अमरीकी धमकियुनि जे रदे अमल ते चयो आहे त ईरान ते मुआशी सभ खां वॾियूं पाबंदियूं मरियूं वयूं आहिनि, पर उन्हनि जो नाकाम थियण तय आहे। पीटीआई बानी खे अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदिरां पिम्स मां तिबी मुआइनो कराए ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण ते हुकूमत ख़िलाफ़ तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल करण जो ऐलान। पीटीआई रोडनि रस्तनि ते एहतजाज करण सां गॾु क़ौमी असेंबलीअ तां इस्तीफ़ाउनि जी धमकी बि ॾेई छॾी। 27 सेप्टेम्बर ते लॉन्ग मार्च वारो सन बि बरक़रार। इस्लामाबाद में पीटीआई ऐं अपोज़िशन जे ॿियनि जमायतनि जे गॾियल इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻवाननि चयो आहे त बानी पीटीआई खे शिफ़ा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमती अदालत फ़ैसिले सां गॾु आईन ऐं कानून जी बि तोहीन कई आहे। अॼु तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती अमल खां पोइ को जवाज़ नथो ठहे त असां हिन ऐवान में वेठल हुजूं। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी? सलमान अकरम राजा चयो आहे त हुकूमत शिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां हुजूम गॾु थियण वारो कूड़ो बयानो ठाहियो। हाणे फ़ैसिलो अवाम खे करणो आहे त हीउ केस अदालत में विढ़जे या रोडनि ते। कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुल ठीक आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़ण न घुर्जे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो क़ौमी असेंबलीअ में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बि इलाज जारी आहे। माज़ी में नवाज़ शरीफ जी सिहत ते मज़ाक उॾायो वियो। बानी पीटीआई पाण बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूद आहिनि। हुननि खे हाणे अहसास थियो हूंदो त बीमारी हिकु हक़ीक़त हूंदी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

0: किसी दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
4: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
8: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
11: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
11: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
11: 0331252578 6
6: جی ہاں بڑی 331 5 5 786
11: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
1: 90.4
2: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हाँ बुड़ी 231 5 5 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

ਤੁੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਤੁੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी है जिंदगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मर हमने शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच
1: अपोजिशन जे बेन जमातन जे गडले इजलास का कोई मीडिया सा गालंदे अगवानन ते वाह तक बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल मुंतकिल न करे। हुकूमती अदालत फैसले सा गड आईन है, कानून जी भी तोहिन कई है। अज तोहिन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराई वी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है तो हुकूमती अमल का कोई को जवाब न तो ठे तो असा इन ऐवान में वेठल हूं। जैसे अदालती हुकुम से अमल करण मुश्किल है तो जमहूरियत की हलंदी। सलमान अकरम राजा है तो हुकूमत शिफा अस्पताल बहरा हुजूम गड थो पूरो बयानो ठाको। हाँ फैसलो अवाम के करो है तो हम केस अदालत में घुर्जे या रोडन से। कसम खणी चवा तो बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। सेहत के मामले के सियासत के वर चाढ़ न घुर्जे। दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ जो कौमी असेंबली में खिताब। ख्वाजा आसिफ है तो पीटीआई बानी की अख बेहतर थी रही है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन लाय भी इलाज जारी है। माजी में नवाज शरीफ की सेहत से मजाक उड़ा वो, बानी पीटीआई पान भी मजाक उड़ा जैं केतरी ही मौजूद आन। उन्हें हाँ अहसास हों तो बीमारी एक हकीकत हूँ है।
2: सोलर ए बैटरी

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
8: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125257866।
5: जी हा, 2315525786।
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजरसानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर्बाद और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला, तू है।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर मान जो सवाल तो असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने कैम जगह ते वैक्सीन कैम उम्र ते पोलियो लगी सके तो कैम उम्र ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल,
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी,
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻराइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252578 6।
6: जी हा, 3135525786।
10: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन सवाल की दाहें तो जड़े ऐसा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी है तो हाने बाद में उनके केड़ी जरूरत पड़े थी। मुझो नालो हाफिज मोहम्मद।

0: जाम नुनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
4: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: ब्लड। ओके जी, वापस आ चुकी हूँ यहाँ पर, प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती है। ओके सित्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताइए, और मुझे ये भी बताइए मेरी आवाज आप लोगों के हाथ सही आ रही है, क्योंकि मैं अगर एक दो दिन प्रोग्राम नहीं करती ना, सिस्टम का ये अदा वाले जो है ना, वो थोड़ा सा सिस्टम बिगाड़ देते। ओके जी, सर यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम के साथ साथ आप लोगों को आज के प्रोग्राम का जरा टॉपिक बताया जाए, क्योंकि आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, तो बताते हैं ताकि आप लोग सवाल के ऊपर जरा आएं और बातें करें। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आप फर्ज करेंगे आज भी अपनी जिंदगी में फर्ज ही करते। बिल्कुल, आज भी हम फर्ज करने वाले हैं, अगर आप रात को सोते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं और आपको इस चीज का पता चलता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है ना वो पीछे चले गए हैं। हाँ जी, आप अपनी जिंदगी के 10 साल पीछे चले गए हैं, तो आप क्या करने वाले, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी जिंदगी में जो है हमने बहुत सारा अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर लिया है कुछ ऐसी चीजों के पीछे जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सुबह उठे आपको पता चले कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए, जानना चाहती हूँ, सब कुछ जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1-4। उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर चलना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, आप जल्दी से आइए, हमारा पेज आपको मिल जाएगा और वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट भी मिल जाएगी, तो उसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक जरूर किया करें क्योंकि मुझे थोड़े लाइक्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, देन आप कॉमेंट कीजिए। हाँ, यो तरीको ज्वाइन करो तुम। ओके, तो प्रोग्राम जो हिस्सो बढ़ जाता वाले मुख्य बधाई, अगर तुम सुबह जो हो तो खबर पे अची वे तो 10 साल पानी जिंदगी जी अगते अची वो यानी पोते हल्या आया आयो अगते ये पोते हल्या आया आयो तो पोए तवां छा कना वे 10 साल जेके तवां के लगे तो शायद मु विनाय छड्या है शायद मु वेस्ट करे छड्या है तो पोए तवां छा कना अगर तां के 10 साल वापस मिली वने पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और चाचा खालिद हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम बेटा सिद्धू, हाउ आर यू, हो फाइन, अचानक कहाँ गायब हो जाती है, मैं तो यहीं पर हूँ, कहते ऐसा ना हो किसी दिन अचानक FM नेटवर्क से गायब हो जाए और हम ढूंढते रह जाए, हमारे पास तो आपका अता पता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम अदा, शाहल आहे अदा, खुश आयो सफा, अरे गाना बुधायो भला सुख, अच्छा ठीक है, मैं समझी, बस डेडिकेट यू एंड सर खालिद को, चलें ठीक है। उनके अलावा चाचे भी हदीका क्या नहीं जी गाने जी फरमाइश करिए ना, थोड़ा पानी मैसेज की वराय सेंड करो, छोटा मुख्य लगे तो ये कमेंट मत ही बनी हुए ना। नजीर को समय सुन रहे बलूचिस्तान से, भाई को वेलकम कहा जाता है, और ऐसे ही आप नजीर भाई क्या कहते हैं, हमारा किरदार हमारी आदत का मजमुआ होता है, आप एक सोच का बीज बोएंगे तो अमल की फसल आगे उगेगी, एक अमल का बीज बोएंगे तो आदत की फसल आगे उगेगी, अगर आदत का बीज बोएंगे तो किरदार की फसल खाएंगे, और अगर किरदार का बीज बोएंगे तो तकदीर की फसल उठेगी। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त हो गया ये तो, और आपको भी वेलकम कहा जाता है, सबको वेलकम कहा जाता है, टॉपिक को फॉलो कीजिए। यहाँ हुआ जाता है टाइम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, बस यही हमारे साथ मौजूद रहिएगा, क्योंकि मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 FM, आप सुन रहे हैं जल्दी का नाम मस्ती।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे, मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: आ, आ, आ, आ, امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
0: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اماں چاہیو تھا اماں جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتو لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہو سو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
5: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3843-842
6: خوشخبری خوشخبری صاف ہے۔

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हां 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए

0: पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ, पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियाँ सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नमस्ते। बिल्कुल जी, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि जिंदगी में मस्ती का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे तो कहते हैं पैसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन मस्ती का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों चीजें साथ साथ चले तभी जिंदगी में मजा आता है। रुके के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपको वेलकम इन खुशामदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। अच्छा जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल ही पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, फर्ज कर लीजिए अगर आप सुबह उठते हैं नींद से जागते हैं और आपको रियलाइज होता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, यानी कि तव्हां उथो था तव्हांजी अख खुली थी 10 साल तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी जे पोइते हलिया विया आहियो त तव्हां छा कंदा? 10 साल तव्हांखे लॻंदो आहे, तव्हांखे रिग्रेट थींदो आहे त 10 साल मूं पंहिंजी ज़िंदगी जा वेस्ट कया आहिनि, या वरी तव्हांखे लॻंदा त न बाबा ही 10 साल मां पंहिंजी ज़िंदगी लाइ तमामु बेस्ट गुज़ारिया आहिनि, यानी कि बेस्ट तरीक़े सां तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे सही तरीक़े सां सुठी ऐं सिधी लाइन में वठी विया आहियो। छो त कुझु माण्हू बाक़ी हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी ज़िंदगी जो हुननि खे ख़बर हूंदो आहे त मूंखे किथे पहुचणो आहे, किथे मूंखे पंहिंजी ज़िंदगी खे पहुचाइणो आहे, पर कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा जेके भई चवंदा आहिनि बस गुज़रे थो ॾींहुं गुज़री वियो बस सही आहे। उन्हनि खे को टारगेट न आहे हूंदो, उन्हनि खे को गोल न आहे हूंदो। बिल्कुल जी, हा सही चवंदा आहिनि पैसे जो मस्ती, ॾिसो ॿई चीज़ूं गॾु आहिनि, ॿई चीज़ूं गॾु ई मज़ो ॾींदियूं आहिनि। अच्छा मुझे आवाज का बताइएगा, सही आवाज मेरी आ रही? क्योंकि मैंने एक तो पंखा भी बंद कर लिया आप लोगों के लिए, दूसरा ये कि मैंने थोड़ा सा मतलब गुचड़ मुचड़ करके देखा सिस्टम को, मुझे थोड़ा अब लग रहा है कि हाँ शायद ठीक है। वधीक तव्हां ॿुधायो त वाकई आवाज ठीक अची पई या न? ओके जी, सो तव्हां सां गॾु मौजूद आहे, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो जिन माण्हुनि कोन कयो आहे, छो त बाबा इहे तव्हां सभिनी जो कमु आहे, तव्हां सभु जल्दी जल्दी कयो। अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद ही, वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम आपका कहते हैं अच्छी आवाज के साथ लाजवाब, सॉन्ग रिक्वेस्ट है, आज रिक्वेस्ट गाना लाज़मी चलेगा। बिल्कुल तव्हांजो गानो हलायूं था। अब्दुल अहद अबासी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमारे साथ ही, जेकब अबासी आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। अच्छा अली अकबर बिरोही कहते हैं वेलकम जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। नूरुल्ला बरना हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। बोले चलती का नाम गाड़ी, यस, लेकिन हमारा चलती का नाम मस्ती है। रशीद कोसो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं जी हैदराबाद से। जीशान अली बोजदार हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। अखलाक बलोच भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, माय स्वीट एंड क्यूट आरजे सिद्रा, क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है, खैर से आ गई, वेलकम टू शो स्वीटी, वेलकम कहते हैं, हैप्पी आपको भी। और उन खां अलावा फहीम कहते हैं वाकई घंटी दिल में बजंदी है। आई नो खुशबू भाई कहते एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। नहीं, धोखा खाया करे, धोखे खाया करे, अच्छी बात होती है, इंसान जो अखियूं खुली वेंदी आहिनि। जब तव्हां हर कंहिं ते अंधो यकीन कंदा आहियो न, उहो थोरो ख़बर पइजी वेंदी आहे त छा करणो आहे ज़िंदगी में। दर्दे दिल कहती अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माई फेवरेट आरजे, आ गई आप चंदा जानी, बिल्कुल आ गई, आप बताएं कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं। सादिया कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपी, आप कैसी हैं, होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल, यस आई एम डूइंग वेल, आप बताएं कैसी हैं। और शौकत बलोच कहते हैं सदरा तुम इतना बोलती हो, घर वाले तुम्हें रहने देते हैं घर में, अञा ताईं त रहण ॾियनि था, बेज़ार आहिनि पर छा था करे सघनि, उन्हनि वटि कोई ऑप्शन बि न आहे, सो बर्दाश्त करणो पवंदो। जॾहिं तव्हांखे हिकिड़ो गानो ॿुधायां थी, ॾाढो भलो गानो अथव, हिनखे इंजॉय कयो, मां थोरो इते ई आहियां, काॾे कोन थी वञा, छोटो साह निकिरेव।

सारे तलाश आ तो पर सुन के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए और टॉपिक को भी फॉलो कीजिए।

अच्छा जर्दे गुल कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह सो क्यूट, आज भी चंदा को नजर ना लगे किसी की, दुआ है कि मेरी चंदा जानी हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच प्यारी जान, आप भी खुश रहे। और शौकत बलोच लगते हैं कि जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, जो बातें दिल तोड़ती है वही तो आंखें खोलती है। डिसो डिसो डिसो या गाल सही मामा गोरे।

हम आगे आ जाएंगे और फिर वही सो जाएंगे. यू पॉसिबल नो दो नहीं तागाल के समझो. अखलाक भाई कहते हैं कसम से. हाँ ॾिसो ॾिसो तव्हांखे पछताव आहे माना पंहिंजी ज़िंदगी में. हुजण घुर्जे हुजण घुर्जे. अच्छा अदा चए थो सची ॿुधा राति को मूवी ॾिठी? न न मूवी त कोन ॾिठी. सोचा नी छा ॾिठो. ड्रामो बि कोन ॾिठो. कुझु बि न. ईअं बसि मुंहिंजे दिमाग़ में अहिड़ियूं चीज़ूं अची वेंदियूं आहिनि. तव्हां ख़बर आहे थोरो क्रेक दिमाग़.

0: ਜੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੁੱਧੋ ਆ
1: ਮੈਂ

ओके भैया चाचा खालिद के दिन 10 साल पीछे जाऊंगा तो आपके साथ को होस्ट बन जाऊंगा और मेरे पास पता क्यों नहीं हो, आपके पास तो क्या किसी के पास भी ना हो। और क्या कहते हैं फहीम ब्रेक, हाँ ठीक है टॉपिक पो मा सीएसएसजी तैयारी कंदम, वाह वाह वाह वाह। सादिया कहती है आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है। अच्छा मैं ऐसा ही मिली हो गानों तो हलाइना तवाज लाए ठीक है। और रिहाना खान बकर से मरसद मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम के साथ।

क्या बात है, बटर जवानी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करे, और साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद है। अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं, आज इंडिया के गाने चला रही है ना बाबा, ये सब पाकिस्तानी गाना चाहते हो तब अगर सादे के लिए अभी ये पोएट्री है, तकाज़ाए इश्क है मेरी आंखों की मस्ती का, खुला तो दीदार आपका, बंद करूं तो तस्वीर आपकी, वाह वाह वाह वाह, डाडी भली शायरी हो। चाचा खालिद लिखते हैं कि उलझा के रख दिया है इस कश्मकश ने मुझको, वो फिर से आ बसी है मुझ में या मैं खो गया हूँ उसमें, वाह वाह वाह वाह। अच्छा हैप्पी के दिन आरजे, आप इतने दिनों से एक बजे वाला प्रोग्राम क्यों नहीं कर रही थी, मैं आपका और आपके शो का इंतजार करती थी, पर आपका शो रेडियो पर नहीं चल रहा था और इतने दिन से आपका प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो पा रही थी, आपका शो तो सुनती थी पर मैसेज नहीं करती थी, वो इसलिए कि मेरे पास मोबाइल नहीं था इसीलिए आपको मैसेज नहीं करती थी, सॉरी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, वैसे शायद मैंने कल परसों ही नहीं किया था एक बजे वाला प्रोग्राम, बाकी तो मैं करती हूँ। ओके जी, अब्दुल गफार रन हमारे साथ हैं भाई, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें, आप भी खुश रहें और हमारे साथ रहें। सादे के दिन टॉपिक में 10 साल पीछे जाऊं तो मैं मैट्रिक के एग्जाम दे रही होती। अच्छा मनाया गालो ये मेरी इतनी बुरी आदत है ना कसम से, जो मैं बात बात पे बोलती हूँ, अच्छा मनाया गालो

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दहन छोती डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तंज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन कर सके पर रेशो दहन साल के घट आ तंज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
5: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अमाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
11: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
11: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
11: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

अच्छा बीजी ऐसा चलाओ कि बोलने का दिल ही ना करे। बिल्कुल जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिर प्रकाश मटियारी संकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ मौजूद है और प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नाम मस्ते। अच्छा तो आपके सिद्धार्थ के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो आप मुझे 888 फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ तरीके का जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। तो बस आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आप जल्दी से हमारे पेज के ऊपर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जनाब, तो प्रोग्राम के हम दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं और यहाँ पर आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदी। साथ ही साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं आपने ऐसा करना है, फर्ज कर लेना है अगर आप सुबह उठते हैं, नींद से उठते हैं, जागते हैं और आपको इस चीज का पता चलता है कि आप अपनी जिंदगी से 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, यानी कि 10 साल तक अपनी जिंदगी से सफा पोते हली वो तो तहां अच्छा कंदा, यानी कि खोड़ माण्हू बिल्कुल इहो सोचींदा आहिनि त असां पंहिंजी ज़िंदगी खे वेस्ट करे छॾियो आहे। हाणे अगरि असांखे टाइम मिले, चांस मिले जिंदगी में पोइते मोटण जो त असां ही कम कंदासीं, असां ही कम कंदासीं। त खोड़ माण्हू वा कहिड़ा हूंदा आहिनि जेके बिल्कुल ईअं चवंदा आहिनि त असांखे अगरि चांस मिली वञे या फिर तॾहिं चवंदा आहिनि त वक़्त जी क़दुरु कयो, वक़्त जेका कॾहिं बि वापसि नाहे मोटी ईंदो। त उहा ई ॻाल्हि आहे, तव्हां मूंखे ॿुधायो अगरि तव्हां सां ईअं थी वञे त पोइ तव्हां छा करण वारा आहियो। उन खां अलावा पोस्ट खे वधि खां वधि लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ऐं तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे बिल्कुल तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि। अच्छा पैनल ते बि खोड़ सारा मैसेजेस जमा थी विया आहिनि, अगर पढ़िया वञनि त सुठी ॻाल्हि हूंदी। अच्छा सो पैनल ते मूंखे सभ खां पहिरियों जेको मैसेज मिलियो आहे उहो मिलियो आहे कश्मोर से अखलाक बलोच। हाय सिदरा, हाय टू यू अखलाक भाई, बिल्कुल तव्हांजो गानो ॿुधोसीं तव्हांखे मज़ो आयो हूंदो। और इरम कहती है नहीं नहीं दिलबर आप ही, आपकी आवाज सही आ रही है। ओके, और ये मौजूद है हमारे साथ हक मौजूद मुलाड इस्लामादर बदीन खान, डॉक्टर हसीना सुमरो साहिबा, डॉक्टर कैप्टन मारिया शायद मारिया सुमरो है। ओके जी, आपने लिखा है गाना सो चलिए। अच्छा ये गाने के बोल है, सही सही मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंद जो गानो हलाईंदासीं। और उनखां अलावा वालेकुम अस्सलाम इन मोलल इस्लाम अदद, छा हाल आहिनि, उमेद त खुश सदा खुश हूंदा, आमीन आमीन। कसीदा ॿुधायो अब्दुल जबार मरी दरिया खान मरी हमारे साथ भाई जान, कसीदा हम प्रोग्राम के साड़ी में लगाते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और ये हमारे साथ है जी डॉक्टर हसीना, दोबारा से कहती है भेण असांखे जेको मैसेज हूंदो ना थोरो थोरो मूंखे समुझ में न ईंदो अलाए छा लिखंदा आहियो, त तव्हां मैसेज जेको आहे सिंधी में लिखी करे शेयर कंदा आहियो पैनल ते, अगरि सिंधी में थोरो मैसेज ईंदो आहे न त वैसे ई थोरो हेॾे होॾे थी वेंदो आहे। सो थैंक यू सो मच, तव्हां सां गॾु मौजूद आहे, तव्हांजी मोहबतूं आहिनि। और ये वालेकुम असलाम फुलजी स्टेशन खां 4G पठान खान खोसो है सिदरा। अच्छा गानो लिखियो अथव डेडिकेट डॉक्टर हसीना सुमरो साहिबा, डॉक्टर कैप्टन मरियम कोरे जो साहिबा जे नाले। चले ठीक आहे, मां कोशिश कयां थी तव्हां भाइरनि जूं फरमाइशूं हलाईंदासीं। सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूने जो हमारे साथी, वालेकुम असलाम, किथे सिदरा मुस्कान साहिबा, शो बेस्ट है, जवाब गेप को पूरा करने के लिए 10 साल नींद ही नहीं करूंगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा। 10 साल तां कीअं न सुम्हंदा बाबा, कीअं न सुम्हंदा। इमेजिन कयो अगरि हिकड़ी राति तव्हां निंड न आयो कंदा, कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके अच्छा निंड तां मूंखे हिकड़ी ॻाल्हि यादि आई, कुझु टाइम पहिरियां न हिकड़ी न्यूज़ वायरल थी हुई त हिकिड़ो छोकिरो अकेलो रहंदो हो यानी की पंहिंजे फ्लेट ते, त टे ॾींहं गुज़री विया हुन जे अंदरि त हुनखे वेंदे माण्हू ॾिठो ठीकु आहे, लेकिन टे ॾींहं गुज़रिया हुनखे कंहिं ॿाहिरि ईंदे न ॾिठो, हुन जा जेके पड़ोसी हुया जेके आस पास माण्हू उहे परेशान थी विया त अॻिलो माण्हू अलाए कुझु थी न वियो आहे अंदरि ऐं दरवाज़ो बि न आहे खुलियो, ॿाहिरि बि न आहे निकितो। जॾहिं हुननि टीम खे घुरायो आहे, पुलिस वग़ैरह आई आहे, हुननि दर भॻो आहे अंदरि वञा ॾिठा आहिनि त हू हमरा सुतो पियो आहे, टे ॾींहंनि खां हू हमरा सुतो पियो हुयो। समुझ में ॻाल्हि अचे थी, टे ॾींहं केरु माण्हू निंड करे सघे थो बाबा, लेकिन हुन कयो बिल्कुलु। या नेक्स्ट लेवल ते या न्यूज़ वई हुई ॾाढी फेमस थी हुई, तव्हां बि शायदि ॾिठी हूंदी।
पर ई भी अथव अड़ा मानू भी अथव निंड मतलब ढी जरूरी हूँ निंड अगर एक मानो जो निंडी है घड़ी उनकी आदत होंगी तो हू तो बाबा ने छे जो टे ढी छा डह ढी भी लगातार निंड कर ॾेखारींदव पर कुछ अड़ा भी हूं जो सफा निंड ना आन क्या असा सोची ना बाबा तक निंड नी अचे चंदा न थी अचे निंड कना कयो जरूरी है निंड असांजी बॉडी लाइ तमाम घणी जरूरी है। अच्छा इन तक बी भी गाल मुझे याद अची वही वह थोड़ी देर का बुधाई ना तो चवंदा हाँ सब सिदरा गाल याद अच्छी मुख्य इलाही गाल याद इंदी पर एक अलग अलग तक बुधाई ना सो ही गानो जो तक बुधाईंदी तुम पोस्ट के लाइक एंड शेयर कर बिल्कुल जी आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम है चलती का नाम मस्ती।

0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, आपका साथ है क्या बात। अच्छा सो हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद अमीन, हमारे साथ ही अमीन फुलपोटो खैरापुर मीरज से कहते वीआईपी प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम कहा जाता है। चाचू लिखे तो घर वाले ना रहने दें तो चाचा के घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए, 24 कलाक पांच घर जो दरवाजा न खुले, इट्स नॉट सेफ, बंद रखो दरवाजो। अच्छा उनके अलावा संजय जी पाल हमारे साथ मौजूद है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। प्रेमचंद भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुमार्टू गोपांग हमारे साथ ही, हाय वालेकुम अस्सलाम, में भी आ गया फ्रॉम कंपर सिटी, ओके कहते हैं प्लीज प्ले सॉन्ग हा हा तोने मुंजी दिल यो माडे साथी मिलियो तो हलाएंगे तांजला गानो। और हैप्पी कहती है आरजे पोस्ट को सब इसलिए लाइक कमेंट और शेयर करते हैं क्योंकि आपसे डरते ही अगर हम लाइक नहीं करेंगे तो आप हमें कुटकी देंगे, बिल्कुल यही गाल था। लाइक और शेयर लाजमी किया करें। माँ तरतीब वारो माण है, माँ पान चुने इंसान, हर एक इंसान जो ना तरतीब सहाल है, उन्हें जो कमा वो सब कम करे। सो ये तान जो कमा तान सब करो। अच्छा साकिब अली पवर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, आइए मारिया मारिया हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम मारिया, आपको वेलकम कहते कहते आप इतने दिन कहाँ चली जाती हैं, रोज यहाँ
1: बना।
0: अच्छा रोज आया करे ना प्लीज, मुझे आपकी आदत लग गई, आपकी आवाज नहीं सुनती तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अरे भाई मैं रोज ही तो आती हूँ, एक बड़ी करे नायब सजाती पे, वैसे 5 बजे वालों प्रोग्राम तो मैं डेली कर दी है। वैसे कल तो जुम्मा था, तानी था मतलब ता जो मैं मोकल भी न करा।

जी दाडो भलो गानो और किशोर भाई कहते जहाँ पे अगर मैं 10 साल पीछे चला गया तो मैं 10 साल छोटा भी तो हो जाऊंगा ना, ये तो अच्छी बात हुई ना। तरी तो चवाव थी नंढड़ा भी थी नो नंढड़ा भी कुराड़ा वाली जवान थी ना। आय हाय ओके जी बिल्कुल बिल्कुल।

पाण खे मतिलब हिन कयो न त अॻिलो माण्हू कोई बि अहिड़े क़िस्म जो लव चए थो डायरेक्ट हुन जो ज़हन तव्हांजे तरफ़ हलियो वञे। ई न कयो बाबा, ई न कयो। हे बि कहती आरजी अगरि 10 साल पीछे गई तो मैं 5 या 6 साल की होती, क्योंकि अभी मेरी उम्र 15 साल है। तो अगर मैं 10 साल पीछे चली जाती तो छोटी होती, खेल रही होती, घूम रही होती। भई आ त सुठी ॻाल्हि आहे न, हर को चवंदो असांखे पंहिंजो बचपन मिले, बचपन मिले। तव्हांखे मिले थो त तव्हां वठो न था। इहो छा आहे, इहो छा आहे।

0: जी असल गाल बिल्कुल याद हो जेको ता बुधो था अच्छा बिलाल अली हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, काफी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और चाचा जिंदगी में कुछ चीजें जो होती है ना वो अच्छे के लिए होती हैं, अब वक्त गुजरता है तो आपको इन चीजों का अंदाजा हो चुका होगा। अगर मुझे ये लगता है कि जो लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं होती, अगर वो यही सोच अपनी जिंदगी के अंदर अपना लेना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। तो ये फार्मूला आप ट्राई करके देखिएगा। अच्छा दर्दी दिल कहती है तुम एक दिन नहीं आते तो मुझे लगता है 7 या 8 दिनों से शो नहीं सुना। अच्छा अब्दुल्ला अली हमारे साथ है, कहते हैं सिद्रा की मुस्कान बड़ी खतरनाक है, जहां बैठ जाए वहां हंसी की दुकान है। ओके जी, अब्दुल्ला अली हमारे साथ है और अब्दुल्ला आपको वेलकम कहते हैं। अगर सादिया को हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया सादिया, एंजॉय कीजिए। हाँ जी क्या ही बात है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हो। इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ जी गपशप है, और गपशप ये जो है ना पूरी पूरी 3 बजे तक जारी और सारी रहेगी। इरम कहती है हाय अल्लाह आप ही, हाँ बस क्या ही कर सकते हैं। अब्दुल जब्बार मरी हमारे साथ, यदि सिद्रा ओपो कयाला गलतिन के सुधारे इंदस से, वाह वाह वाह वाह, बिल्कुल या सोच हो जन गुर्जे। और रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंबानी भाई हमारे साथ, अदी अच्छो असां के 10 साल पोए ते धिको देन थी वरी एतरो पंद करे केर इंदो अज जते पोता आयूं इए पोचंदा जी हाणी पोता टेंशन चोता वेठो।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए पेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असावट अल्लाह ताला जी बड़ी नियामत आए बारन जी सेहत जो ख्याल रखा लाजमी है जरूरी आए असान जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुवत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ही बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
4: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-200
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 41 43 842।
8: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
10: सुनते रहो GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

थे आप आधे, बहुत ही प्यारा सा गाना, मैं वैसे गाना सुन रही थी, इंजॉय कर रही थी, अच्छा गाना था। उनका अलावा जेको आज तमाम मौजूद आए प्रोग्राम सुन रहे हैं, चलती का नाम मस्ती आगे से द्राव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सखर मोरो मेरपुर खास मटियारी सकरण मेरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। हम आ चुके हैं ना प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, मुझे लगा अभी मतलब एक लिंक खत्म हुआ है और ये लास्ट लिंक आ गया। चले नहीं, सो आपको वेलकम कहते हैं। और इसके अलावा टॉपिक यही पूछा आप लोगों से कि आप मुझे बताएं, अगर आप फर्ज कर लीजिए कि आप सुबह उठते हैं जागते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अगर ये पता चल जाए हम 10 साल अपनी जिंदगी के जो है वो पीछे चले गए हैं और उनको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब यकीन जाने कि उनका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप अपना बताएं। खैर वैसे के साथ साथ यहाँ पर ये गाना हमने एंजॉय किया जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुका है, दूसरा गाना हमारी लिस्ट में है जो कि हम जाहिर सी बातें एंजॉय करेंगे। और सजाद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मातली से आप हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। ये तोड़फोड़ मेरी चलती रहती है।

ओके जी साधिया साधिया थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और समाटो गोपाल सिधरा नाराजगी छा कमेंट शामिल न था कर जैसे मथे हुआ उस पढ़िया है अगर तुम न बुधा तो बाबा ने मुझे कड़ी गलती है वास भाई हमारे साथ मौजूद है मुझे प्यारी भेण कड़ा हार है खुश आयो सब अच्छा चंगी भली यस तुझो बुधायो फहीम कहते असा तो टे बजे का सुम्मी सुमण जा आदि थी वह आयो अच्छा टे बजे का सही सही सही और ये वकील अहमद सिंधी हमारे साथ हैं विक्यो खास के लिए ओके फ्रॉम सैयद गुलाम हैदर शाह से बाजी आप कैसी हैं आपका शो बहुत अच्छा है बाजी माय फ्रेंड जमील खास के लिए और मुरीद बस इतना ही मैसेज है तो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं

0: माटू गुपा के सलाम टू शाद कॉलोनी कंबर से सनाउला एजाज हुसैन गोपांग इनायतुल्ला गोपांग गुल हसन गोपांग किफायतुल्ला गोपांग हुसैन अली गोपांग रहमान अली गोपांग चलें जी सबको वेलकम कहते हैं। उनके अलावा आसिस गट मौजूद आए दर्दे दिल कहती है मैं तो जल्दी सोती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ जल्दी सुमण वारा जल्दी उठण वारा मानू डाटा भला हूँ अच्छा। उनके अलावा नन चाचा तवा की नो यस यो कोई बो हो वासो भाई थे अदी सिद्रा देर में देर असा भी प्रोग्राम में पहुंची वया सी थैंक यू सो मच प्यारा सुना भाव
1: मुझी पसंद जो ख्याल रखे मुझी हुसैन गीत लिखे।
0: हां फहीम बिल्कुल गाल के घुमाए फिराए कंदा आयो अगलो मानो समझे ना

किशोर भागे दे अदा तू अगर अज रात सुम्ही सुबुह तुझी अख खुले तू 80 साल जी कुराड़ी थी वही आही हिकड़ो भी दंद ना है पो तुझी फीलिंग केड़ी हुंदी सच बुधाया त सुठो लगंदो छो छो त पो मुखे ओ टाइम लंदो बस मुखे सिर्फ रिलैक्स करनो हुंदो कम कार जिंदगी जी भाग दौड़ या सब जको आ ना वो परते हली वेंदी सो सही आ ऑप्शन सुठो आ

0: वाह साईं वाह हलो गानो बदरतासी अच्छा ही पैनल ते कुछ मैसेजेस आहन अलाए किथे सजा समझो में गाल न दियो छ अच्छा एडम थैंक यू आप हमारे साथ हैं और मकसूद बना कहते मेरापुर से मुस्कान मुझे मास्टर मंसूर का गाना सुनाना बिस्मिलायूं अच्छा यो गानो आज हली मां कोशिश क्या थी अगर न हलियो तो वरी 5 बजे वाले प्रोग्राम में हलाए वठंदासीं ये मौजूद है आप कैसी सिद्रा जी सलाम दीजिएगा रिजवान साहब कहाँ गायब है 78 मोरी से राजा हमीचंद किशोर कुमार हीरा भाई अकबर कुंभर और राधो महर नवाब ड्राइवर प्लीज प्ले ममताज मोलाई तू मनी असा यार चले दिसा थी हलायूं था यो गानो वैसे रिजवान साहब तो अपने कामों में मसरूफ है वो नहीं करेंगे भाई प्रोग्राम भले ता केरो भी चौस हम नहीं करेंगे मुझे बिल्कुल ये लगता है
1: बेबी दो साए के भी दुखे मोड़ते काफर थ्या जे गदार थ्या
0: अच्छा ये मौजूद ही अदी सिद्रा असाजा मैसेज कोन पया पढ़ो कावड़ा छा अब्दुल जबार न बाबा तां जो मैसेज पढ़ी छड़ियो मु और ये मौजूद ही वालेकुम अस्सलाम आपका शो वेरी नाइस है गोठ मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ है वेलकम जी वेलकम और बाजी सिद्रा क्या हाल है आपके शो वेरी नाइस है मीरपुर खास का उम्मीद अली उतरादी है सलाम चौवन कुमार खालिद जुड़े जो अदील अबड़ो रांझन कोरी इकबाल खालिक लाशारी एंड यू सो वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से ये कहते हैं बाजी सिद्रा आई लाइक योर वॉइस इज गुड ज्वेलरी से उम्मीद अली उत्तरादी सलाम किशोर अजीज कुमार अजीज सुमर सोलंकी अंकल गफूर और आकेब शकूर लाशारी एंड यू प्ले शमन हेलो केडा मानू याद अव असा गा कदे कदे पांजो नालो ही विसरी वेंदो
1: शरत मनामा जी अचवे तू ती कयामा
0: अच्छा फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान घोसो भाई तहां जो मोहब्बत हुआ तहां से प्रोग्राम बुधो पया अच्छा खालिद असांदे पैनल ते मौजूद आहे मजाक करता हूं आपसे अपना समझ के नहीं बिल्कुल मैं भी आपसे मजाक करती हूं कोई बात नहीं है पांचा पान में आयो टेंशन न वठंदा कयो मुझी टेंशन न कंदा कयो और हक मौजूद मौला इस्लामदत बदीन खान डॉक्टर हसीना सुमरो सगन मौजूद आहे डॉक्टर साहिबा तहां जो मोहब्बत हुआ तहां ओ हीडा सारा मैसेज करी छड्या है गोठ मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू भा तहां जो भी मोहब्बत हुआ तहां भी वराए वराए मैसेज शेयर करी छड्या है

0: मुझे।
1: अच्छा दर्दें तो लगती हैं कि कुछ चीजों से मुझे नफरत है, जैसे कि नजरअंदाज करने के बाद दी गई तवज्जो से, सच जाने के बावजूद झूठ सुनने से, दुख के बाद दी गई खुशी से, दर्द देने के बाद माफी मांगने से, और तकलीफ के बाद दी गई मोहब्बत से। वाकई यो तो न सिर्फ सबनीन के चीजों का नफरत आई। बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद। और विकियो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। बख्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। राशिद खोड़ू हमें सुन रहे हैं, कहते आज अच्छे मूड में है, वाई मुझे भलो मूड भी ताकि भला नथो वणे जा वरी वाय चवण पहुंची भी आयो। वाय छो बुधाया तव्हांखे मां अच्छा अली मोहम्मद भाई हेलो हेलो
2: मोड़ते काफर थ्या।
1: हाँ हैप्पी बिल्कुल सही करी, टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी गुजर जाता है। वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी कह रहा सगड़ा।

अच्छा हा तोड़ फोड़ की टेंशन नहीं है, बाकी यो आ टेबल जे हेठा ना इलाही सारी तारियूं पई हुंदियूं त मूंखे यो भोंदा करे करंट न लॻी त मां इलाही खेचल कंदी आहियां, खेचली ॿार आया न तॾहिं। सो ही लास्ट ट्रेक असां पंहिंजी लिस्ट में रखी छॾियो आहे जेको असां बिल्कुल इंजॉय कंदासीं। हदीका ज्ञानी जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। अच्छा सो न बाबा विसरियो केर बि कोन्हे को, सभु यादि आहियो।

0: आशिक अली महते सलाम जी जी, आपका 5 बजे वाला प्रोग्राम 88 पे तो नहीं चलता, वो सिर्फ लाड़काना में चलता है, तो आप फेसबुक पर हमें सुन सकते हैं। अच्छा अख्तियार अली सिंधी भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। किशोर भाई कहते हैं सैया बाबा जितना देर करोगी हम उतनी देर बाद कमेंट करेंगे, ता लगे तो लास्ट में तो कमेंट कया ही कोन के जगह बस स्टार्टिंग में कया। पढ़ में मसलू थी भैया झा बला जो कलर।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: बानी के फौरी तौर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर संदी मुआइनो कराने की असदा उजैर भंडारी ए सलमान अक्रम राजा पारा दाखिल कल दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, कानून वे वजीर आजम नजीर तारण ए सुल समा वे वजीर अता तारण के धुर बनाया वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सीटीडी कोरोनरी एंजियोग्राफी सहूलत फाल न होने जो नोटिस वे जांच कमेटी जोड़ छी, कमेटी के समूरन रुखन जो जायजो वे हकीकतन जो पतो लगाने की हिदायत, कमेटी अस्पताल में 2022 का सीटीडी कोरोनरी एंजियोग्राफी की टेक्निकी सहूलत इंसानी वसीलन सॉफ्टवेयर बाबत हकीकतन जो जायजो वे कमेटी मरीजन के रेफर कर मखसूस निजी इदारे के फायद पहुंचाने वे मामले जो भी जायजो वी रिपोर्ट वजीर आजम के पेश की। पाकिस्तान ए मलेशिया जो दहशतगर्दी मंशियात के रोकथाम ए इंसानी स्मगलिंग खिलाफ गडियल सहकार वधाने के इतफाक, सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के गरु वजीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात, सिक्योरिटी के शोबे में सहकार वधाने भी जोर भरियो वो। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान शहर के मलेशिया के मार्केट्स तीन पहुंच से जोर भरीदे तो मलेशिया में चावर पटाटन कणक ए जानवर के खुराक की तलब मौजूद है, गरु वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो बरसातन ए बोर दौरान फौत थी वेलन खानदानन की मदद ए तबाह थी वेलन घरन की बीहर तामीर जो हुकुम, इम्कानी बरसातन ए बोर के नुकसान बाबत थियल इजलास में वजीर आजम पारा बोर मुतासिर इलाकन में बिजली ए रोड रस्तन की बहाली लाए भी कदम करण की हिदायत, वजीर आजम के ब्रीफिंग में बुधाया वो तो मुल्क के मुतासिर इलाकन में बोर मुतासिर के महफूज हंधन डां मुंतकिल पो वे, बरसातन इम्कानी बोर सबब NDMA सूबाई मैनेजमेंट अथॉरिटी जो टीमों मदद लाए तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमण है तो कराची के मसलन के जिम्मेवार MQM है, एक साजिश तहत हड़तालू कर सनअतन के तबाह किया वो। मुस्तफा कमाल ए खालिद मकबूल सिद्दीकी की हड़ताल की हिमायत वाली वीडियोज अज भी मीडिया वट मौजूद हैं, एक एक हड़ताल दौरान 30, 40 ए 50 तीन लाश खाया वा हुआ। कराची में मीडिया से ालाईदे शर्जीली नाम मेमण नफरत की सियासत कदड़ जमायतू पैं सूबे के बदनाम कन थी, कराची जहा मसला हल कर मुस्बत ए जिम्मेवारानी सियासत की जरूरत है, पीपी हमेशा कौमी मुफाद के अवलियत दिनी है, सिंध जहा मानू बाशूर समझदार हैं, उ डन पाया तो हर लुखे वक्त में केर साणन गड बीहे तो। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ अली जो है तो सिंध के नव सूबो न पर वसीला इंसाफ अमुन बराबरी रोजगार तालीम ए पानी घुर्जे, खराब हुकुमरानी जो हल सिंध के विरांगे पे गोल्हण बदरा असुल बीमारी ए वसीलन की फुरलुट के खत्म करण घुर्जे, कराची सिंध जो तारीखी तकगा ए अणटुट हिस्सो है, नए सूबे के नाले से सिंध के विरहण या मकानी हुकूमत के सुधारण के सूबाई खुदमुख्तियारी खिलाफ इस्तेमाल करण वाली हर कोशिश के सिंध जो अवाम नाकाम बनाई। तालीम खाते में बदलिन मुकररिन के नाले थींदड़ करप्शन ते चार सेक्शन ऑफिसर के हटाया वो, हटायल ऑफिसर में हसनैन अब्बासी, अली अकबर प्रगड़, खालिद जमाली ए तारिक हुसैन शामिल हैं, ई ट्रांसफर पॉलिसी का सिवाय मनपसंद मुलाजमन के रिश्वत एवज पोस्टिंग देण जा इल्जाम, अली अकबर प्रगड़ के तालीम खाते में हटायण के एक डी बाद आपाशी खाते में सेक्शन ऑफिसर मुकरर कयो वयो, तालीम बारे वजीर ई ट्रांसफर का सिवाय मनपसंद मुकररिन ए मुबैना माली बेजाबगिन की इंक्वायरी मुकरर कर छी। प्राइमरी उस्तादन की सर्विस स्ट्रक्चर समेत बेन मुतालबन की मंटा लाए पेटी एलिफ जी सत्ते मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा नौशहरों फिरोज दादू कंदको नवाबशाह कुंभ रियासी फनवाकिल बेन शहर में एहतजाज किया वो अगवाणन का चवण है जायज मुतालबा तस्लीम न क्या वह एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मेहरापुर भरसा गोदो शाख में ब मासूम बार बुधी वया एक जो लाश हथाय है बे की गोला जारी है बुधी वल चैन वरन के अब्दुल रहमान आराई जो लाश हथाय है सत वरन के अरहम आराई की गोला जारी है वारसन जो चवण है बारड़ा शाख भरसा रांद खेलंदे बुधी वया गोठान पारा पैंजी मदद पाण तहत बुधी वल बारड़े की गोला जारी है। गढ़ी यासीन भरसा गोठ साले ईसानी में मुड़स हथा जाल कतल जवाबदार शादी खान ईसानी पैंजी जाल रहीमा के बंदूक जा फायर करे कतल कयो आहे। मकबूल औरत जो लाश जरूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो आहे। पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार न करे सघी आहे। जैकमाबाद में पुलिस अहलकार जो घर मां गोलियूं लगल लाश हथायो आहे। पीडीसी कॉलोनी में घर में अहलकार महबूब जकरानी जो लाश मिलो है। इतला से पुलिस पहुंची लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर छो है। वारसन जो चवण है अहलकार सुबह जो खीर वठण लाए उथन्द है। खीर वारे बुधायो है अज न उथ्य है जांच लाए वयासी तो संदस लाश मिलो है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन ॾहनि सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे, त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान, तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक ॾहनि सालनि खां घटि आहे, तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बीमार करार ॾيڻ पीटीआई बानी के फौरी तौर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण संदस मुआइनो कराइण जी असदा उज़ैर भंडारी ऐं सलमान अकरम राजा पारां दाख़िल कयल दरख़्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, कानून वारे वज़ीर आज़म नवीद तारण ऐं सुल्ह समा वारे वज़ीर अता तारण खे धुर बणायो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ इस्लामाबाद जे पीएमजी अस्पताल में सीटीडी कोरोनोग्राफी सहूलियत फाल न हुअण जो नोटिस वठंदे जांच कमेटी जोड़े छॾी। कमेटी खे समूरनि रुखनि जो जाइज़ो वठी हक़ीक़तनि जो पतो लॻाइण जी हिदायत। कमेटी अस्पताल में 2022 खां सीटीडी एंजियोग्राफी जी टेक्नीकी सहूलियत इंसानी वसीलनि ऐं सॉफ्टवेयर बाबति हक़ीक़तनि जो जाइज़ो वठंदे। कमेटी मरीज़नि खे रेफर करण ऐं मखसूस निजी इदारे खे फ़ाइदो पहुचाइण वारे मामले जो बि जाइज़ो वठी रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश कंदी। पाकिस्तान ऐं मलेशिया जो दहशतगर्दी मंशियात जे रोकथाम ऐं इंसानी स्मगलिंग ख़िलाफ़ गडि॒यल सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मलेशिया जे गुरू वज़ीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल जी मुलाक़ात। सिक्योरिटी जे शोबे में सहकार वधाइण ते बि ज़ोर भरियो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान शयुनि जे मलेशिया जे मार्केट ताईं पहुच ते ज़ोर भरींदे चयो आहे त मलेशिया में चांवर, पटाटनि, कणक ऐं जानवरनि जी खु़राक जी तलब मौजूद आहे। गुरू वज़ीर मोहसिन नक़वी बि मुलाक़ात में मौजूद हो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो बरसातनि ऐं ॿोॾि दौरान फ़ौत थी वियलनि ख़ानदाननि जी मदद ऐं तबाह थी वियलनि घरनि जी ॿीहर तामीर जो कम। इम्कानी बरसातनि ऐं ॿोॾि जे नुक़सान बाबति थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारां ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि में बिजली ऐं रोड रस्तनि जी बहाली लाइ बि क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त मुल्क जे मुतासिर इलाइक़नि मां ॿोॾि मुतासिरनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वधीक बरसातनि ऐं इम्कानी ॿोॾि सबबि एनडीएमए ऐं सूबाई मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयार आहिनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमण चयो आहे त कराची जे मसलनि जे ज़िमेवार एमक्यूएम आहे। हिकु साज़िश तहत हड़तालूं करे सनअतनि खे तबाह कयो वियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ख़ालिद मकबूर सिद्दीकी जी हड़तालनि जी हिमायत वारियूं वीडियोज़ अॼु बि मीडिया वटि मौजूद आहिनि। हिकु हिकु हड़ताल दौरान 30, 40 ऐं 50 ताईं लाश खया वेंदा हुआ। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शर्जील नामेमण चयो त नफ़रत जी सियासत कंदड़ जमायतूं पंहिंजे ई सूबे खे बदनाम कनि थियूं। कराची जा मसला हल करण लाइ मुस्बत ऐं ज़िमेवारानी सियासत जी ज़रूरत आहे। पीपी हमेशह क़ौमी मुफ़ाद खे अवलियत ॾिनी आहे। सिंध जा माण्हू बाशौर ऐं समझदार आहिनि। उहे ॾिसनि पिया त हर ॾुखे वक़्त में केरु साणनि गॾु बीहे थो। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो चयो आहे त सिंध खे नओं सूबो न पर वसीला, इंसाफ़, अमुन, बराबरी, रोज़गार, तालीम ऐं पाणी घुर्जे। ख़राब हुकमरानीअ जो हल सिंध जे विरांगे में ॻोल्हण बदिरां असल बीमारी ऐं वसीलनि जी फुरलुट खे ख़तम करण घुर्जे। कराची सिंध जो तारीख़ी तख़्तगाह ऐं अणखुट हिसो आहे। नए सूबे जे नाले ते सिंध खे विरहाइण या मकानी हुकूमतनि जे सदारनि खे सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी ख़िलाफ़ इस्तेमाल करण वारी हर कोशिश खे सिंध जो आवाम नाकाम बणाईंदो। तालीम खाते में बदिलियुनि मुक़ररनि जे नाले ते थींदड़ करप्शन ते 4 सेक्शन आफ़िसरनि खे हटायो वियो। हटायल आफ़िसरनि में हसनैन अब्बासी, अली अकबर टगर, ख़ालिक जमाली ऐं तारिक हुसैन शामिल। ट्रांसफर पॉलिसीअ खां सवाइ मनपसंद मुलाज़मनि खे रिश्वत एवज़ पोस्टिंग ॾियण जा इल्ज़ाम। अली अकबर रगड़ खे तालीम खाते मां हटाइण जे हिकु ॾींहुं बाद आपाशी खाते में सिलेक्शन सेक्शन आफ़िसर मुक़ररु कयो वियो। तालीम वारे वज़ीर ई ट्रांसफर खां सवाइ मनपसंद मुक़ररनि ऐं मुबैना माली बेज़ाबतियुनि जी इंक्वायरी मुक़ररु करे छॾी। प्राइमरी उस्तादनि जे सर्विस स्ट्रक्चर समेत ॿियनि मुतालबनि जी मंता लाइ पेट ए अलिफ़ जे सते मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। लाड़काणो, नौशेरो फिरोज़, दादू, कंकोन, नवाबशाह, कुम, ब्रियास्टी, पन्नो, आकिल ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाज कयो वियो। अॻवाणनि जो चवण आहे त जाइज़ मुतालबा तस्लीम न कया विया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।

0: मेहरापुर भरसा गोदो शाख में ब मासूम बार बुरी वया एक जो लाश हथ बे जी गोल्हा जारी है। बुरी वेल चैन वरन जे अब्दुल रहमान आराई जो लाश हथ आयो है। सत वरन जे अरहम आराई जी गोल्हा जारी है। वारस जो चवण है बारड़ा शाख भरसा रांग खेलंदे बुरी वया गोठान पारा पैंजी मदद पाण ते बुरी वेल बारड़े जी गोल्हा जारी है। गढ़ी यासीन भरसा गोठ साले साणीअ में मुड़स हथां ज़ाल क़तल। जवाबदार शादी खान साणी पंहिंजी ज़ाल रहीमा खे बंदूक जा फायर करे क़तल कयो। मक़तूल औरत जो लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी। जैकमाबाद में पुलिस अहलकार जो घर मां गोलियूं लॻल लाश हथ। एडीसी कॉलोनीअ में घर मां अहलकार महबूब जखराणी जो लाश मिलियो। उतराते पुलिस पहुची लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। वारसनि जो चवण आहे त अहलकार सुबुह जो खीर वठण लाइ उथंदो आहे। खीर वारी ॿुधायो त अॼु न उथियो आहे, जांच लाइ वियासीं त संदसि लाश मिलियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाउ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03125252786
7: जी हा 2315525786
9: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं TFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: मुकरर करण की मंजूरी आईन के आर्टिकल 245 तहत दिनी वही पाक फौज जो टे कंपनियों छह महीने ताई रावलपिंडी में मुकरर हुंदियूं। जारी कल पधराई मूजिब फौज जिले इंतजामिया से गड अमन अमान की सूरतहाल बरकरार रखंदी। शहर के हसास हंधन अहम रोडन रस्तन ते सिक्योरिटी के इंतजाम के असरायतो बनाए वेंदो। फौज मुकररी की मंजूरी पंजाब के घरू खाते के दरख्वास्त दिनी वही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी सहूलत फाल न जो होने जो नोटिस वे जांच कमेटी जोड़े छी। कमेटी के संबोधन रुखन जो जायजो वी हकीकतन जो पतो लगाने की हिदायत। कमेटी अस्पताल में 2022 का सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी की तकनीकी सहूलत इंसानी वसीलन सॉफ्टवेयर बाबत हकीकतन जो जायजो वी। कमेटी मरीजन के रेफर कर मखसूस निजी इदारे के फायदो पहुंचाने वाले मामले जो भी जायजो वी रिपोर्ट वज़ीर आज़म के पेश की। पाकिस्तान ए मलेशिया जो दहशतगर्दी मनशियात की रोकथाम इंसानी स्मगलिंग खिलाफ गडियल सहकार वधाने ते इतफाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी सा मलेशिया के घरू वजीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में सहकार वधाने ते भी जोर भरियो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान शयन की मलेशिया के मार्केट्स ताई पहुंच ते जोर भरीदे मलेशिया में चावर पटाटन कणक जानवर की खुराक की तलब मौजूद है। घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो बरसात ए बोड दौरान फोत थी वेलन खानदान की मदद ए तबाह थी वेल घरन जी बीहर तामीर जो हुक्म। इम्कानी बरसात ए बोड के नुकसान बाबत थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारा बोड मुतासिर इलाकन में बिजली ए रोड रस्तन की बहाली लाए भी कदम खण की हिदायत। वज़ीर आज़म के ब्रीफिंग में बुधाय वो त मुल्क के मुतासिर इलाकन में बोड मुतासिर के महफूज हंधन डां मुंतकिल कयो पियो वञे। बरसात ए इम्कानी बोड सबब NDMA सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो टीमों मदद लाए तैयार आन।
2: पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निजाम था, चाहे आपके KMC हो चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM की राबता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलजाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलजाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राबता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। जो पब्लिक पार्क थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख ले, सारे MQM लीडर मिलेंगे आपको। जाती तौर पर शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए।
1: सिंधर सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन चाहे तो कराची के मसलन की जिम्मेवार MQM है। एक साजिश तहत हड़तालू कर सनअतन के तबाह किया हो। मुस्तफा कमाल ए खालिद मकबूल सिद्दीकी की हड़ताल की हिमायत वारियों वीडियोज अज भी मीडिया वट मौजूद हैं। एक एक हड़ताल दौरान 30, 40, 50 ताई लाश खया वेंदा हुआ। कराची में मीडिया से गाले शजील मेमन चाहे नफरत की सियासत कदर जमातू पैंजे ही सूबे के बदनाम कन थी। कराची जहा मसला हल कर मस्बत ए जिम्मेवार सियासत की जरूरत है। पीपी हमेशा कौमी मफाद की अवलियत दिनी है। सिंध जहा मू बाशूर ए समझदार आन उसन पाया तो हर डुखे वक्त में केर साणन गड बीहे तो। सेहत बारे वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल है तो सूबे की गाल कर कुफर ना है, तरीकेकार से गाल थी सके थी। कराची में तकरीब के खिताब कर मुस्तफा कमाल ये निजाम 70 साल का नौजवान के गद्दार बनाए रो है। हालतन का तंग थी मू हथियार खड़ी जबलन से वनी वेठा आइन में सूबा ठाण जो तरीको दर्ज है। आइन में 27 तरमीमू थी चुकू जो मतलब है तो आइन में खामियों मौजूद हुई। कराची वासी पानी खरीद कर पी रहा है। वजीर ने ऑफिसर जा टैंकर हली रहा है। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह आसतीक बली जो चयो आहे त सिंध खे नओं सूबो न पर वसीला इंसाफ़ अमन बराबरी रोज़गार तालीम ऐं पाणी घुर्जे। ख़राब हुकमरानी जो हल सिंध जे इलाके में ॻोल्हण बदिरां असल बीमारी ऐं वसीलनि जी पुलुट खे ख़तम करणु घुर्जे। कराची सिंध जो तारीख़ी तख़्तगाह ऐं अणटुट हिसो आहे। नए सूबे जे नाले ते सिंध खे विरिहाइण या मकानी हुकूमतनि जे सुधारनि खे सूबाई ख़ुदमुख़्तारी ख़िलाफ़ इस्तेमाल करण वारी हर कोशिश खे सिंध जो अवाम नाकाम बणाईंदो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: ख़ुशख़बरी, अवांजे पंहिंजे शहर माथी में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
10: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
11: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
10: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद। आहे।
11: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
8: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: जो दोस्त मिलंदो, जेको पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड थींदो, दुनिया में स्प्रेड थींदो, सुभाणे उहो ई तव्हांजे कम अची वेंदो।
1: मतलब तव्हां यूनिवर्सिटी चवंदा,
0: यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर मिसाल न बि
1: तव्हां कॉलेज साइड कयो, पर रेगुलर पढ़ो, रेगुलर क्लास अटेंड कयो,
0: छॾियो।
1: छाकाणि त अक्सर स्टूडेंट्स जो इहो ख़्याल हूंदो आहे त असां कॉलेज साइड कयूं था त असां रेगुलर क्लासिस।
0: कॉलेज में यूनिवर्सिटी में छा आहे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्राइटेरिया साॻियो ई आहे। हुते बि टेस्ट आहिनि, हुते बि असाइनमेंट्स आहिनि, हुते बि सेमेस्टर्स आहिनि, हुते बि मार्क्स टेस्ट जे हिसाब ॾिनी वेंदियूं आहिनि, टेस्ट जे हिसाब सां ॾिनी वेंदियूं आहिनि, प्रेज़ेंटेशन जे हिसाब सां ॾिनी वेंदियूं आहिनि, ऐं अटेंडेंस जे हिसाब सां ॾिनी वेंदियूं आहिनि। ठीकु, हुन खां अलावा रेगुलर अचण सां छा थींदो आहे की जॾहिं तव्हां पंहिंजी प्रैक्टिकल लाइफ में ईंदो न, तव्हां कोई बि सब्जेक्ट तव्हां खां मिस न थींदो।
1: सही था चओ।
0: चइनि सालनि जे कैरियर में तव्हां स्लो स्लो हिकु सब्जेक्ट, ॿ सब्जेक्ट, टे सब्जेक्ट तव्हां वाक़िफ़ थींदा ईंदो सब्जेक्ट सां। जॾहिं तव्हां वाक़िफ़ थींदा ईंदो त तव्हांजा

0: करे तो, डिग्री वठे तो पियो, सजेशन करे सके तो, एडवाइस करे सके छो पढ़े तो ना, स्टडी करे तो, ठीक है, ड्राफ्ट क्रिएट करे सके तो, एडवोकेट्स गेट्स प्रॉपर लाइसेंस फ्रॉम द कंसर्न बार, कि मां कंसर्न कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहियां तो मुझे बार जो लाइसेंस खपे, दैट इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द लॉयर एंड द एडवोकेट्स.
1: All right. Lawyer means एक बात advocate तरह license. Okay. Degree holder.
0: Degree holder हो जाए.
1: Yes.
0: Advice भी करे सके तो, drafting भी करे सके तो, छोके पढ़े दो.
1: जी जी जी जी.
0: ठीक है. जब वकील advocate जो मकसद दिया कि उनके सिंध बार या पाकिस्तान बार
1: license
0: देती कि ता practice करे सको ता concerned district में वनी करे या concerned court में वनी करे.
1: All right.
0: उन्हें practicing license जे करे उनके advocate चाहिए वरना.
1: ठीक है. सो इन खां अलावा असा इंदासी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लॉ जी अगाने ता गाल कई ते क्रिमिनल सिविल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज या भी टैक्सेशन साइड भी हुंदी आ इनन के थोड़ो ता
0: मान एको क्लियर करी छदा त क्लियरिया के वकील लॉयर के हाण हिकड़ो टर्म करे डठो वंदो छ के ता जदे भी गलाइन हम वकील हैं हम लॉयर से सोहाणिया एकड़ी इंटरमिंगल टर्म थी पर अगर जेकडे ता सर्च कंदो स्टडी कर दो तो ताके उते डिफरेंस नजर इंदो.
1: ओके ओके.
0: एक लॉयर से एडवोकेट में छा फर्क है.
1: अच्छा इन में एक
0: सिर्फ लाइसेंस
1: भी है. अच्छा इन में बैरिस्टर भी अची पे वने एक
0: बैरिस्टर
1: उने के भी ता
0: असन गेट्स डिग्री फ्रॉम द लंदन लिंकन सिंट
1: जो
0: बारेट लॉ करे छे लंदन में उने के बैरिस्टर चाउंदा.
1: ओके
0: भाई माने ये भी समझो तो वकील ही आएन उनन के भी लाइसेंस हो प्रैक्टिस करण जब भी उनके लाइसेंस होता कि दे कैन डू प्रैक्टिस पर जी डिग्री लंदन में थेल होंदी.
1: ऑल राइट. सो करियर से अचन खा पेरा एक दो सवाल मुझे ज़हन में अच्यो पाने स्टेप वाइज इनके टॉपिक के खणो लेट ते क्लियर थी वे डिग्री भी क्लियर थी वे रिजल्ट भी अची देन उनन के छा करणो पवंदो एकड़ो गेट जो टेस्ट भी असा मुदियो है.
0: गेट जो बाबा दैट इज अ गेट मन दरवाजो.
1: यस
0: वो जनरल असेसमेंट टेस्ट होता है. जनरल असेसमेंट टेस्ट जो सोल जो पर्पज यो के तमा बार में प्रैक्टिस करना चाहो था कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहो था उन जो प्रॉपर एकड़ो प्रोसीजर अडॉप्ट कंदा कि अगर ता गेट जी तैयारी कंदो गेट जी तैयारी छै जेके भी ता 4 साल में
1: अपन
0: को सब्जेक्ट पढ़या उनन मा एकड़ी टेस्ट इंदी आ लेकिन एंट्रेंस टेस्ट चनो कि ऐसा मां आई वांट टू प्रैक्टिस इन द सन कंसर्न कोर्ट पाकिस्तान में केड़ी भी कोर्ट में मां प्रैक्टिस करना चाहे तो जंजे ला मुके गेट जो सर्टिफिकेट वठण लाजमी है.
1: ओके.
0: छो तो गेट जे सर्टिफिकेट खा पो मां पे जेके भी क्रेडेंशियल्स हुंदा जेके भी डॉक्यूमेंट्स हुंदा वो मां वेरिफिकेशन जे लाए मोकलदुम के मां प्रैक्टिस करना चाहे तो वो उनमें तहां के छा थिंदो के 50% तहां के गेट जी टेस्ट पास करनी पवंदी उनमें भी कुछ अटेम्प्ट्स हुंदा.
1: अच्छा उदया केतरा अटेम्प्ट्स होता है सर गेट जा गेट भी चाहे एक बार ही वठदा है
0: गेट जा 5 अटेम्प्ट वन.
1: ओके
0: तो वही एचएससी वठंदी है हायर
1: एजुकेशन. अच्छा वही सेम उन वांगुर लेट वांगर
0: सेम लेट वांगर ही हुंदा. उन में तहां के 50% तहां के जो कन मार्क्स उन में अटेंड करनी पोंदियो उन खा पो तहां जो कन पेंजे के भी प्रोविंस में या के भी डिस्ट्रिक्ट बार में या के भी उनमें ता पेंजे डॉक्यूमेंट्स
1: पूरे पाकिस्तान में
0: काथे भी ता क्रेडेंशियल्स मोकल दो डॉक्यूमेंट्स मोकल दो इंटीमेशन जेके सा चाना इंटीमेशन मोकल दो जे में ता जी 6 सालन 6 महीने जी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड हुंदी जूनियर सा जे में 10 केसेस लिस्ट थांदी ता जी.
1: अच्छा 6 महीने जी जगह प्रैक्टिस रिक्वायर हुंदी आफ्टर डिग्री हुंदी या बिफोर
0: डिग्री.
1: ओके
0: आफ्टर जी ता डिग्री वठंदो
1: देन ता जी
0: अपन जी सीनियर सा प्रैक्टिस कंदो तो उन में ता जा 10 केसेस लिस्ट थांदा जे की जे में ता जी अपीयरेंस हुंदी के ही हैज अपीयर्ड इन दिस केस उनमें सिग्नेचर थे हुई तेज सीनियर जी जो लेटर इशू कह तो बाबा इन केसेस में अपीयर थे एज अ प्रैक्टिस वाइज तो तहके उन जैसे तक इंटीमेशन मोकल दो इंटीमेशन मोकलन का बार वोकेशनल कोर्स कराइंदा.
1: ओके
0: कुछ प्रोविंस कराइंदा कुछ न कराइंदा मिसाल सिंध में थे तो बार वोकेशनल कोर्स यो 15 दिन कोर्स हों जैमें सिंध जुडिशियल अकेडमी में जो भी मेंबर्स इंदा वे बेसिकली थिक सिखाइंदा.
1: अच्छा
0: ड्राफ्टिंग तरीका वे ऑफ ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कजे अपीयरेंस की हुए एडवोकेसी जो एथिक्स की हुजन कोर्ट में तहके पेश किए थो कोर्ट में तहके डिलीवरेंस की देनी है तो 15 जो कोर्स कराइंदा उन सर्टिफिकेट दींदा सर्टिफिकेट का सब डॉक्यूमेंट जडे सिंध सिंध बार काउंसिल जडे पुजंदा तो इनको इंटरव्यू शेड्यूल थी उन इंटरव्यू शेड्यूल में अपीयर थींदा उनका पोइ इनके लाइसेंस मिलंदो.
1: ओके वो इंटरव्यू भी जेको आते
0: वो भी पास करनो
1: पास करनो
0: ता इंटरव्यू पास कयो ता पे ता के लाइसेंस मिलदो अदरवाइज वरी ता के जगा प्रोसेस के इनिशिएट करनो पोंदो वरी फिर.
1: ओके आ केतरा दफा जेको आते प्रोसेस के इनिशिएट करी सके
0: गेट 5 टाइम
1: गेट 5 टाइम. ओके ऑल राइट. आई सर हाँ अचू पे पा डिफरेंट करियर्स से उन्हें तुम बुधाइंदा तो कड़ा करियर्स या एज वेल एज कड़ी जो दस फील्ड्स सिविल साइड थी वही क्रिमिनल साइड थी वही टैक्सेशन साइड थी वही कम्यू साइड्स भी आन उनते तवा असंगे ब्रीफ कंदा प्लीज
0: दीस आर द फील्ड्स बाबर.
1: अच्छा एलएलबी करे.

0: जवाब ॾिनो ठीकु आहे हाणे मां इहो चाहियां पियो तव्हां थोरो इन डिटेल ॿुधायो
1: डिटेल
0: फॉर एग्ज़ाम्पल एल एल बी माण्हू करे वरिती उनखे जेको आहे त लाइसेंस में मिली वियो ठीकु आहे त हू कहिड़ी उन तरफ़ वञे साइड तरफ़ सिविल केसिस बि विढ़ी सघे थो या उनजे लाइ कुझु अलॻि कोर्सिस करणा पवंदा या क्रिमिनल सिविल ॻाल्हि
1: कोर्सिस जी ज़रूरत न आहे ॾिसो अगरि तव्हां मिसाल स्टडी कंदा आहियो चार साल पंज साल तव्हां पढ़ंदा आहियो जीअं तव्हां क्लासिस अटेंड कंदा अगरि तव्हां सिखो था पिया हुते त वंस यू गेट द लाइसेंस जीअं तव्हां एडवोकेसी जो लाइसेंस वरितो यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस हाणे तव्हांखे अगरि क्रिमिनल साइड सम्झ में अचे थी तव्हांजी स्टडी थ्रू आउट क्रिमिनल ते घणी रही आहे ॾिसो न वधि में त असां हिकिड़े सीनियर खे जॉइन कंदो एज़ अ प्रोबेशन पीरियड जे लाइ प्रोबेशन पीरियड जे लाइ उन खां अलावा गवर्नमेंट जी तरफ़ां एनजीओ जी तरफ़ां या चैम्बर्स जी तरफ़ां हिकु इंटर्नशिप थींदियूं आहिनि टिनि महीननि जूं छहनि महीननि जूं जूनियरशिप इंटर्नशिप उनमें कुझु अमाउंट बि मिलंदो आहे उन सां छा थींदो आहे थोरी फाइनेंशियल सपोर्ट थी वेंदी आहे ऐं सपोज तव्हां क्रिमिनल साइड वञणु चाहियो था त लाज़मी तव्हां उन चैम्बर खे ज्वाइन कंदो जंहिंमें तव्हां क्रिमिनल जो कमु सिखंदो सॼो क्रिमिनल जे कम मां मक़सदु इहो हूंदो त एफ आई आर खां वठी करे सबमिशन ऑफ द एफ आई आर खां वठी करे वेंदे ट्रायल ताईं ट्रायल खां वठी जजमेंट ताईं उहो सॼो तव्हां कमु सिखंदव सो उनमें तव्हां बेल बि सिखंदव ट्रायल हलाइण बि क्रॉस करणु सिखंदव फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करणु सिखंदव तव्हां अपील दाख़िल करणु सिखंदव रिविजन दाख़िल करणु सिखंदव उहा क्रिमिनल साइड ईअं फैमिली ईअं सिविल साइड डिपेंड करे थो त तव्हां कहिड़े एरिया में रहो था उते ज्यादातर प्रैक्टिस छाजी आहे तव्हां मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में रहंदव तव्हांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी वैरायटी मिलंदी उते तव्हांखे टैक्सेशन जा लॉयर्स मिलंदा उते तव्हांखे बैंकिंग लॉयर्स घणा मिलंदा उते तव्हांखे कॉर्पोरेटिव लॉयर्स घणा मिलंदा तव्हांखे इमिग्रेशन लॉयर घणा मिलंदा ठीकु आहे ईअं तव्हांखे सिविल जा लॉयर्स बि इलाही मिलंदा
0: डेट बी यू पंहिंजे मथां डिपेंड करे पियो त तव्हां कहिड़ी साइड तव्हांखे इंटरेस्ट आहे
1: ऐं तव्हां इंटरेस्टेड आहे ॾिसो न जीअं इंजीनियरिंग ऐं मेडिकल
0: आहे
1: हाणे इंजीनियरिंग में किथे इलेक्ट्रॉनिक्स
0: आहे किथे
1: सिविल आहे किथे इलेक्ट्रिकल आहे किथे मेटलर्जिकल आहे किथे
0: इनवायरमेंट
1: में ॾिसो न ईअं डॉक्टरी में हर क़िस्म जी फील्ड
0: आहे
1: डॉक्टर दिलि जो आहे को अखियुनि जो आहे को दिमाग़ जो आहे ईअं वकालत में इहा फील्ड आहे की तव्हां पर्टिकुलर फील्ड में काॾे था वञणु चाहियो डिग्री वठण खां पोइ
0: अर्निंग ते सर अचो अगरि तव्हां हाणे ॻाल्हि कई त इंटर्नशिप में जेको आहे त कुझु अमाउंट बि ॾिनो वेंदो आहे अक्सर जेको आहे त एडवोकेसी खां बाद में लाइसेंस मिलण खां बाद में बीइंग एडवोकेट जॾहिं थी वेंदा आहिनि त उन्हनि जी सोच हूंदी आहे त असां उथंदे ई अर्निंग करणु शुरू कंदासीं हिकु त तव्हां इन ते बि ॿुधायो ऐं सेकेंडली इहो बि ॿुधायो जी तव्हां ॿुधायो त सिविल साइड बि आहे क्रिमिनल साइड आहे फैमिली साइड आहे कहिड़ी साइड वधीक अर्निंग थी सघे थी
1: बाबा डिपेंड करे थो त अर्ली डेज में तव्हांजो माइंड छा ठहियल
0: आहे
1: अगरि तव्हांजो दिमाग़ क्रिमिनल साइड ठहियल आहे तव्हां पंहिंजी पंहिंजो माइंड ठाहे आयो पंहिंजे अप्रोच खे क्लियर करे आयो की मूंखे क्रिमिनल लॉयर थियणो आहे त तव्हां उहो चैम्बर ॻोल्हींदो ठीकु अगरि तव्हां पंहिंजी स्टडी जे दौरान तव्हांखे जेकी सिविल आहे उन फैसिनेट कयो तव्हां सिविल साइड हलिया वेंदा ईअं स्टडी जे दौरान तव्हांखे टैक्सेशन फैसिनेट कयो तव्हां टैक्सेशन जी
0: तरफ़
1: इहो डिपेंड करे थो की वकील जी उते जेको आहे न जेको हिकिड़ो लॉयर अबाउट टू बिकम लॉयर जेको वकील थियण वारो आहे एडवोकेट थियण वारो आहे त ड्यूरिंग पंहिंजी कॉलेज लाइफ में यूनिवर्सिटी लाइफ में कहिड़ो सब्जेक्ट हुनखे घणो अट्रेक्ट करे थो पियो त हुन तरफ़ उहो हले वेंदो रही अर्निंग जी ॻाल्हि वंस यू गेट द लाइसेंस त लाइसेंस वठी छॾो नाओ यू हैव टू स्टार्ट द अर्निंग तव्हां पंहिंजी अर्निंग स्टार्ट करे छॾो तव्हां पंहिंजा केसिस खणणु शुरू करे छॾो छोकि तव्हां टे साल चार साल पढ़ो था जॾहिं असां एल एल बी कईसीं टे साल डिग्री हुई तव्हांजे टाइम में पंज साल थी वई वरी घटाए करे वरी चार साल डिग्री थी वई त डिग्री वठण खां पोइ लाइसेंस वठण खां पोइ यू आर कॉल्ड द एडवोकेट नॉट द जूनियर तव्हां जूनियर न तव्हां जूनियर सॾाईंदो प्रैक्टिस वाइज के सपोज हिकिड़ो सीनियर हुनजी 15 साल प्रैक्टिस आहे कंहिंजी 10 साल प्रैक्टिस आहे तव्हां जूनियर उन पॉइंट ऑफ व्यू सां सॾाईंदो जॾहिं लाइसेंस मिलण खां पोइ यू ऑल आर द एडवोकेट्स
0: ओके
1: तव्हां यू आर द पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी बाक़ी रही आहे ॻाल्हि के अर्निंग बिल्कुलु फस्ट डे खां तव्हां शुरू करे छॾियो अगरि तव्हांखे को केस मिले थो पियो अर्निंग शुरू करे
0: छॾियो सर ईअं बि आहे त अर्निंग जे लाइ जंहिंमें तव्हांजी एक्सपर्टाइज़ वधीक आहे तव्हां उन साइड वधीक अर्निंग करे सघो
1: डिपेंड करे थो तव्हांखे कहिड़ो सब्जेक्ट घणो फैसिनेट करे कहिड़ी फील्ड घणो फैसिनेट करे थी पई ॿियो डिपेंड करे थो अगरि तव्हांखे सीनियर ज्वाइन करणो आहे त सीनियर जे लाइ तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ साल ऐं ॿ साल एज़ अ प्रोबेशन पीरियड जेके असां चवंदा आहियूं यूटी पीरियड जेके अंडर ट्रेनिंग उन में तव्हां छा सिखंदव कोर्ट जो अंदर प्रोसीजर वर्क सिखंदव चवंदा न गुड लॉयर हैज़ टू बिकम अ क्लार्क मन हुनखे क्लार्क जो कमु बि सिखणो पवंदो
0: क्राफ्टिंग
1: जो कमु बि सिखणो पवंदो हुनखे सबमिशन जो कमु बि सिखणो पवंदो उन खे फाइलिंग भी सीखनी पवंदी, उन खे केस लॉज भी कढ़णा पवंदा, उन खे प्रोपर मेहनत भी करनी पवंदी, वकील सां गॾु उन खे क्लारिकल कम भी अचणु खपे, छो त लाज़मी केस हुन जो आहे। सुभाणे केस जी सबमिशन खां वठी करे केस जे हलाइण ताईं उन खे सॼी नो हाउ हुजे, कंहिं ते डिपेंडेंट न हुजे। अगरि हुन खे ड्राफ्ट लिखणो आहे, ही हैज़ टू ड्राफ्ट। अगरि हुन खे सबमिशन करणी आहे, साईं पाण सबमिशन करणी आहे। हुन खे केस एडमिट कराइणो आहे, पाण एडमिट कराइणो आहे। पेजिंग करणी आहे, हुनखे पाण पेजिंग करणी आहे। त सॼो फुल पैकेज हुजे हुन खे, माना शुरू खां वठी आख़िर ताईं सॼी जी सॼी हुनखे पंहिंजी लाइफ खे, हुनखे पंहिंजी प्रैक्टिस जे दौरान इनखे बि पंहिंजो हिसो करणु खपे। जॾहिं तव्हां एक्सपर्ट थी वेंदव, पोइ अगरि तव्हां वटि कोई ज्वाइन करणु चाहे थो एज़ अ जूनियर, पोइ तव्हां हुनखे कमु सिखायो।
0: अच्छा सर, इन ते तव्हां ॿुधाईंदा त जीअं तव्हां ॻाल्हि कई की सीनियर वटि जेको आहे त सिखणु घुर्जे, केतिरो टाइम रिकमेंड कंदव त उहो सीनियर वटि रहे?
1: इट डिपेंड्स अपॉन हाउ क्विकली इज़ लर्निंग, केतिरो जल्दी हो सिखे थो।
0: कुझु सीनियर्स क्विकली सेखारींदा बि कोन आहिनि, ऐं काफ़ी सारा अहिड़ा जूनियर्स ॾिठा आहिनि।
1: सिखण जो पर्पज इहो न आहे त तव्हांखे वेही करे पढ़ाईंदा, सिखण में तव्हांखे ऑब्जर्वेशन करणी पवंदी। सर पढ़ी त तव्हां आया आहियो, तव्हां छा सिखण आया
0: आहियो?
1: पढ़ाई तव्हां करे आया आहियो, स्टडी तव्हां करे आया आहियो, लॉस तव्हांखे ख़बर आहे, ठीकु आहे। हाणे तव्हांखे सिखणो आहे प्रोसीजरल वर्क। प्रोसीजरल वर्क तव्हांखे किथे ख़बर पवंदी? कोर्ट जे अंदरि। प्रोसीजरल वर्क हूंदो छा आहे? फ्रॉम द टाइपिंग ऑफ द केस टू द सबमिशन ऑफ द केस टू द फाइनल जजमेंट डिक्री, जे हलाइण खां वठी करे, माना लिखण खां वठी करे आख़िरी जजमेंट ताईं जेको केस हलाईंदा हुन सां, इन सॼे खे प्रोसीजरल वर्क चवंदो
0: आहे।
1: उहो हुनखे सिखणो हूंदो आहे, पोइ हुन ते मथो डिपेंड करे थो, अगरि उहो कॉन्फिडेंट आहे, हुनजी ग्रामर सुठी आहे, हुनजी लैंग्वेज सुठी आहे, हुनजे अंदरि हिकिड़ो दबंग हिकिड़ो जेको आहे न छा एटीट्यूड आहे, ऐं उहो सुठो इख़लाक जो मालिक आहे, ऐं आर्ग्यूमेंट्स पंहिंजा सुठा थो रखे, पंहिंजी रिसर्च सुठी थो रखे, सो ही कैन बिकम अ गुड एडवोकेट आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस। जीअं लाइसेंस वठी छॾियो, हुन जे अंदरि सॼी क्वालिटीज़ अवेलेबल आहिनि, ही हैज़ नो नीड टू जॉइन एनी काइंड ऑफ सीनियर, ही हैज़ टू स्टार्ट हिज़ ओन प्रैक्टिस इंडिविजुअल, पंहिंजो एज अ इंडिपेंडेंट, एज वी कॉल इट एज अ इंडिपेंडेंट लॉयर।
0: अच्छा, हिकु त हिकु पासो इहो थी वियो, हाणे सेकंड पासे असां कॉमन मिस्टेक्स ते अचूं। काफ़ी सारा एडवोकेट्स मूं अहिड़ा बि ॾिठा जेके जूनियरशिप ते हली हली काफ़ी मायूस थी विया, हुननि जी का अर्निंग कोन थी, देन हुननि इहा फील्ड ई स्विच करे छॾी, चवनि यार असांखे करणी ई कोन्हे। कहिड़ी हुननि जी अहिड़ी कॉमन मिस्टेक्स आहिनि जी वजह सां हुननि खे इहो स्टेप करणो
1: पियो? कुझु जूनियर या कुझु जेके लाइसेंस वठण खां पोइ वेट कंदा आहिनि असां वटि केस अचे तव्हां स्टडी। मां पंहिंजे सीनियरनि खां सिखियो त अगरि मिसाल सपोज़ जेसि ताईं केस अचे तव्हां स्टडी त कयो न, तव्हां जजमेंट्स पढ़ो, तव्हां अथॉरिटीज़ पढ़ो, तव्हां जेकी ऑफिस में फाइल पई आहे त हुनखे पढ़ो, ठीकु आहे। मेजर एक्ट्स पिया आहिनि, क्रिमिनल बेयर एक्ट्स पिया आहिनि, सिविल बेयर एक्ट्स पिया आहिनि, हर क़िस्म जो लॉ पियो आहे, त हुन ते स्टडी कंदा रहियो। जॾहिं स्टडी न हूंदी, तव्हांखे प्रोसीजर वर्क जो ख़बर न हूंदो, त ऑटोमेटिकली डेफिनेटली तव्हां मायूस थींदो। जेकॾहिं तव्हांखे प्रोसीजर ख़बर हूंदो, वर्क ख़बर हूंदो, लॉ ख़बर हूंदी, तव्हांखे ऑटोमेटिक कंहिंखे सुठी एडवाइस कयो था, इन्वेस्टमेंट छा आहे? वकालत में पहिरीं इन्वेस्टमेंट आहे, इन्वेस्टमेंट आहे तव्हांजी एडवाइस। अगरि तव्हां कंहिंखे सुठी एडवाइस ॾियण शुरू था करे छॾियो, तव्हां कॉन्फिडेंस बिल्ड था कयो, तव्हांजी इन्वेस्टमेंट इहा ई आहे, टाइम जेको तव्हां ॾियो था। तव्हांजी लोकेलिटी में मिसाल सपोज को चए बाबर मुंहिंजो हे इशू आहे, मूंखे एडवाइस खपे, हाणे बाबर खे पाण ई ख़बर न हूंदी त एडवाइस काॾो ॾींदो? बाबर खे हुन जे लाइ पढ़णो पवंदो, बाबर खे स्टडी करणी पवंदी। सपोज असां लीगल कॉर्नर ऐं पॉडकास्ट असां शुरू कयो आहे, हिन में असां इम्पार्ट छा था कयूं? एडवाइस, इम्पार्ट छा था कयूं? नॉलेज, नॉलेज काॾो थी अचे? किताबनि में आहे,
0: स्टडी करणी,
1: ठीकु आहे। ऐं उनखां पोइ जेको पाण जनरल डिस्कशन कयूं था, काॾो था कयूं? प्रैक्टिकल वर्क, त प्रैक्टिकल वर्क असां हुते सिखूं था पिया, स्टडी असां किताबनि में कयूं था, पोइ असां हिकिड़ो पूरो पैकेज था थी वञूं था। अगरि असां कंहिंखे सुठी एडवाइस ॾियूं था त डेफिनेटली उहो चार माण्हुनि खे थो ॿुधाए, चार अठनि खे था ॿुधाइनि, अठ सोरहं खे था ॿुधाइनि, कीअं तव्हांजी क्लाइंटेशन
0: वधंदी।
1: लॉयर हू नोस थिंग्स, सो देट इज जेको इनिशियल स्टार्टिंग में जेकी थिए थी के लैक ऑफ स्टडी, लैक ऑफ स्टडी,
0: लैक ऑफ स्टडी, लैक ऑफ
1: स्टडी आहे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आहे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नाहे, ऐं मॉडर्न टेक्नोलॉजी सां अवेयरनेस नाहे, केस लॉस कीअं सर्च करनि हुनजी नो हाउ नाहे, ठीकु आहे। सिर्फ़ फाइल खणी करे कोर्ट ताईं पुॼण, ई वकालत नाहे। हुन केस खे हलाइणो बि आहे, हुन केस खे खटणो बि आहे। अगरि मिसाल इंसान न बि खटे, रिज़ल्ट सलाह जे हथ में आहिनि, पर एतिरी महिनत थियल हुजे, हिकिड़ो तव्हां खां सेटिस्फाई थी
0: वञे।
1: सो दीस आर द कॉमन मिस्टेक, के जेसि ताईं तव्हां वटि केसिस नथा अचनि, तव्हां पंहिंजे सीनियर जे अंडर पढ़ो, सीनियर जे अंडर सिखो, सीनियर जेकी इंस्ट्रक्शन दे उनके फॉलो
0: फॉलो कयो।
1: अगर मिसाल तां के काई शे मिले तो वह गाइडेंस वठो, नती समझ में चे पुछो। इवन एतरे कदर अगर तां के कोर्ट रीडर का भी पुछणो पए ना, सर मुके नती समझ में चे तां उन खां शे पुछो वञ करे, पुछणो न मुंझणो, जे तां को कॉमन मिस्टेक्स न थे, जजन जे सामू तां के एग्रेशन न दिखाणो, ठीक आ, तां के हंबल तरीके सां, चूंकि तां के रिलीफ वठणो आ, तां हंबल तरीके सां उन्हनि खे ट्रीट कयो, ठीक, पंहिंजे क्लाइंटेशन जे करे, क्लाइंटेशन जे करे तव्हां खे कोर्ट स्टाफ सां नाहे विहणो, छो अल्टीमेट पर्पज छा आहे, टू गेट द रिलीफ, रिलीफ ईअं मिलंदो न अगरि तव्हांजो बिहेवियर रिलीफ कीअं मिलंदो, दे आर द एग्रेसिव, हाणे तव्हांजो ठहियल टुकड़ रिलीफ बि तव्हांजे हथ मां निकिरी वेंदो, हिन जे करे तो बी हंबल, सबमिशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईअं न आहे त सबमिशन में माना तव्हां किरिया पिया हुजो, डज़न्ट मीन, सबमिशन जो मतिलबु इहो आहे की बी हंबल इन योर नेचर, अगरि तव्हां उहो थी था वञो त पोइ इन में इहो आहे त तव्हांजी क्लाइंटेशन बि वधंदी, तव्हांजो एटीट्यूड बि सुठो हूंदो, ऐं प्लस में तव्हांखे सुठो रिलीफ बि मिली सघे थो पियो। सॼियूं ॻाल्हियूं हिकु
0: तरफ़,
1: मेन जेकी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त अगरि तव्हांखे लॉ जी फील्ड में अचणो आहे त तव्हांखे स्टडी करणी आहे, तव्हांखे स्टडी करणी आहे, तव्हांखे ड्राफ्टिंग बि सिखणी आहे, तव्हांखे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सां अवेयर बि हुजणो आहे, कंटेम्प्रेरी स्टडी बि तव्हांजी हुजे, प्लस में तव्हांखे जेको आहे न पंहिंजी जेकी रुटीन वाइज़ जेके केसिस आहिनि उते बि नो हाउ हुजे,
0: विदाउट डेट तव्हां रिकमेंड न कंदा त लॉ जी साइड अचो, छाकाणि त स्टडी जेकी आहे त मैंडेटरी आहे, हीअं खाली डिग्री जेकी आहे त तव्हां जेकी कम अची न रहंदी, ईअं आहे, खाली डिग्री सां गॾु ईअं त लॉयर चवराए सघे थो पाण, लॉयर नॉलेज हुजे न,
1: अगरि मिसाल तव्हां डिग्री त वठी आहे तव्हां नॉलेज ई न, तव्हां छा कंदो।
0: ऑल एक्सर एडवाइसिस तव्हां काफ़ी सारियूं ॾेई वियो, पर मां हिकिड़ी एडवाइस अञा तव्हांखां वठंदुसि, जेके लॉ स्टूडेंट्स आहिनि स्पेशली उहे दौरान स्टडी जेको आहे स्टडी खे टाइम घटि ॾींदा आहिनि ऐं प्रैक्टिस जी तरफ़ हलिया वेंदा आहिनि, कोर्ट जी तरफ़ हलिया वेंदा आहिनि, इवन सेकेंड ईयर में ई हलिया वेंदा आहिनि, उन्हनि खे तव्हां छा एडवाइस ॾींदा?
1: मां पंहिंजे कॉलेज में जिते मां पढ़ाईंदो आहियां, मां ॿारनि खे बि इहो ई सम्झाईंदो आहियां की तव्हांखे हफ़्ते में अगरि सपोज चार ॾींहं, तव्हांजी चार ॾींहं पंज ॾींहं क्लासिस हलनि थियूं, तव्हांखे ॿ ॾींहं मिलनि था फ्राइडे ऐं सैटरडे, जेके फ्राइडे बि क्लास हले थी, सैटरडे तव्हांखे मिले थो पियो, अगरि तव्हांजे अंदरि शौक़ु आहे सिखण जो की मां प्रैक्टिस करणु चाहियां थो, तव्हां वीकेंड में हिकिड़ो ॾींहुं मुक़ररु कयो,
0: ओके,
1: उन वीकेंड में तव्हां कंहिं सीनियर खां परमिशन वठी छॾो, या इंडिविजुअल बेसिस ते तव्हां पाण कोर्ट अचो, तव्हां लाइब्रेरी में पंहिंजा को दोस्त आहिनि, कोलीग्स आहिनि, या तव्हांजा सीनियर आहिनि, भाइर आहिनि, ब्रादर्स
0: आहिनि,
1: या तव्हांजा पाड़े वारा आहिनि जेके वकालत करनि था पिया, शाम जे टाइम तव्हां हुननि जे चेंबर्स ते हलिया वञो, वीकेंड में हिकिड़ो ॾींहुं ॾियो, वीकेंड में ॿ ॾींहं ॾियो, बाक़ी जेके चार ॾींहं आहिनि पंज ॾींहं उहो तव्हां पंहिंजी स्टडी खे ॾियो, जेको टीचर अचे थो कुझु सिखाइण थो अचे, सपोज बेसिक नॉलेज अगरि तव्हांखे हूंदी न त प्रैक्टिस में अचण जे टाइम तव्हांखे तकलीफ़ न थींदी, अगरि तव्हां वटि बेसिक नॉलेज न हूंदी तव्हां प्रैक्टिस में अची करे वरी उहे पंजनि सालनि जी महिनत कंदो, वरी तव्हां उहो जेको आहे न थियोरेटिकली जेको तव्हां न पढ़ी सघियो, वरी तव्हां प्रैक्टिकल लाइफ में अची करे सिखी, माना जे सिखण वारे प्रोसेस सां हुनखे सिखी वठंदो,
0: सही था चओ,
1: बहितर इहो ई आहे त तव्हां, मुंहिंजी सजेशन इहा ई आहे की अगरि तव्हांखे इंट्रस्ट आहे, शौक़ु आहे, मना न आहे, पर एटलीस्ट तव्हांजो जेको प्रैक्टिसिंग ईयर हुजे न उहो तव्हांजो फोर्थ ईयर हुजे या फाइनल ईयर हुजे,
0: ओके ओके,
1: उन में तव्हां साल पंहिंजो भले तव्हां पंहिंजो अचो, पंहिंजे सीनियर्स खे ज्वाइन कयो, छोकी तव्हां 90% कोर्स पंहिंजो कवर करे चुका,
0: तव्हांखे
1: बेसिक नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे, क्रिमिनल जी नॉलेज तव्हांखे मिली चुकी हूंदी आहे, फैमिली जी नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज तव्हांखे मिली चुकी हूंदी आहे, कानून शहादत जी तव्हांखे नॉलेज मिली चुकी, स्पेसिफिक रिलीफ जी तव्हांखे नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे, लैंड लॉज जी तव्हांखे जेको आहे न नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे, रेंट लॉज जी तव्हांखे नॉलेज, हाणे सिर्फ़ तव्हांखे विद इन आख़िरी साल में छा करणो हूंदो आहे, पाण खे पॉलिश करणो हूंदो आहे, जंहिंमें असां छा चवंदा आहियूं, जंहिंमें इंटर्नशिप बि ॿार जॉइन करे छॾंदा आहिनि, उन सां छा थींदो आहे, तव्हांखे ड्राफ्टिंग सिखणु, सबमिशन, अपीरिंग, ऐं तव्हांखे जेको आहे न कोर्ट में कीअं तव्हांखे पंहिंजे केस खे रिप्रेजेंट कजे, उहे शयूं तव्हांखे सेखारी वेंदियूं जेके अॻिते हली तव्हांखे प्रैक्टिस में कमु ईंदियूं।
0: ऑल राइट, शहबाज़ साहब, थैंक यू सो मच, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो ऐं असांजे अॼु जे टॉपिक ते तमामु सुठी नॉलेज असांजे लिसनर्स सां एज़ वेल एज़ असांजे व्यूअर्स सां शेयर कई, अव्हांजा थैंकफुल आहियूं।
1: मां वंस अगेन तव्हांखे चवंदुमि कि फीडबैक लाज़मी आहे, अगरि सपोज़ असां को ओपिनियन ॾिनो आहे, अगरि कोई ओपिनियन सां अगरि डिफरेंस रखे थो पियो, तव्हां पंहिंजा फीडबैक ॾियो, बाबर तव्हां सां नंबर शेयर कंदो, ऑनलाइन बि
0: असां
1: फेसबुक ऐं इंस्टा ऐं व्हाट्सएप ते जेके बि मीडियम्स आहिनि उते असां वेंदा आहियूं, अगरि को ओपिनियन कंहिंखे लॻो के न वकील साहब इहो ओपिनियन सही न ॾिनो आहे चङे तरीक़े सां, त तव्हां असां इहो ओपिनियन करेक्ट कराए सघो था, ईंदड़ प्रोग्राम में असां हुनखे करेक्ट करे
0: छॾंदासीं,
1: नोट्स कंदासीं, छो की हर ॾींहुं सिखण जो ॾींहुं
0: आहे,
1: हर जॻह कुल इल्म त असां बि न
0: आहियूं,
1: जेको असांखे वक़्तु ॾिनो आहे असां उन जो ई फ़ाइदो वठी करे तहां ताईं ॻाल्हियूं पुॼायूं था पिया.
0: ऑल राइट, सो बिल्कुल व्यूअर्स तव्हांजी फीडबैक जो असांखे इंतज़ारु रहंदो. असांजो नंबर आहे 03000113488. अॻे प्रोग्राम में वरी नए मौज़ू सां गॾु अवां सां मुलाक़ात थींदी. तेसीं ताईं अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर.
2: जिस धरती से
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: तिबी मुआइने वक़्त PTI बानी जी भेण पिण मौजूद हुई. PTI अस्पताल ॿाहिरां माण्हुनि जा हजूम गॾु करे अदालती हुकमनि जी भञकड़ी कई. सिहत जे मामले ते सियासत न थियणु घुर्जे. इतलात वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त PTI बानी जॾहिं पाण वज़ीर आज़म हो त माण्हुनि जी सिहत ते तंज़ कंदो हो. ॿियनि जी सिहत बाबति संदसि बयान सभिनी जे साम्हूं आहे. हुन कॾहिं बि कंहिंजी सिहत ते तोहीन जोगो रवैयो अख़्तियार नाहे कयो. तिबी ऐं कानूनी मामले खे सियासत जी भर न चाढ़ियो वञे.

0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो बरसात ऐं बोड दौरान फौत थी वियलनि खानदारनि जी मदद ऐं तबाह थी वियल घरनि जी ॿीहर तामीर जो कम इम्कानी बरसात ऐं बोड जे नुक़सान बाबति थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारां बोड मुतासिर इलाइक़नि में बिजली ऐं रोड रस्तनि जी बहाली लाइ बि क़दम करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त मुल्क जे मुतासिर इलाइक़नि मां बोड मुतासिरनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वधीक बरसात ऐं इम्कानी बोड सबबि एन टी ए में ऐं सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयार आहिनि।
1: वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो एमक्यूएम है। एमक्यूएम की वजह से ही कराची के जो निजाम था, चाहे आपके केएमसी हो चाहे आपके डीएमसी हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। एमक्यूएम की राबता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलदियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलदियाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राबता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। जो पब्लिक पार्क थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें, सारे एमक्यूएम लीडर मिलेंगे आपको। जाती तौर पर शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए।
0: पंहिंजे सीनियर वज़ीर शरीर लाल मेमण चयो आहे त कराची जे मसइलनि जी ज़िमेवार एमक्यूएम आहे। हिकु साज़िश ते हड़तालूं करे सनअतनि खे तबाह कयो वियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जी हड़तालुनि जी हिमायत वारियूं वीडियोज़ बि अॼु बि मीडिया वटि मौजूदु आहिनि। हिकु हिकु हड़ताल दौरान 30, 40 ऐं 50 ताईं लाश खयां वेंदा हुआ। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शरीर मेमण चयो त नफ़रत जी सियासत कंदड़ जमातूं पंहिंजे सूबे खे बदनाम कनि थियूं। कराची जा मसला हल करण लाइ वसपत ऐं ज़िमेवारणी सियासत जी ज़रूरत आहे। पीपी हमेशह क़ौमी मफ़ाद खे अवलियत ॾिनी आहे। सिंध जा माण्हू बाशऊर ऐं समझदार आहिनि। उहे ॾिसनि पिया त हर ॾुखे वक़्त में केरु साण गॾु थी

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻारायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
7: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

वफाकी हुकूमत रावलपिंडी में 6 महीने लाए फौज मुकर करण की मंजूरी दई छी। नोटिफिकेशन मूजिब रावलपिंडी में फौज मुकर करण की मंजूरी आईन जी आर्टिकल 245 तहत डिनी वही। पाक फौज जो 3 कंपनियों 6 महीने ताई रावलपिंडी में मुकर होंदियों। जारी कल पधराई मूजिब फौज तल जिले इंसामिया से गड अमन मान की सूरतहाल बरकरार रखी। शहर के हसास हंधन अहम रोड रस्तन से सिक्योरिटी के इंतजाम के सहायतों बढ़ाए वो। फौज मुकररी की मंजूरी पंजाब के घरू खाते की दरख्वास्त डी वही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी सहूलत पाल न होने जो नोटिस वठंदे जांच कंपनी जोड़ी छी। कमेटी के समूरन रुखन जो जायजो वी हकीकतन जो पतो लगाने की हिदायत। कमेटी अस्पताल में 2022 का सीटी क्रोनरी एंजियोग्राफी की तकनीकी सहूलत इंसानी वसील ए सॉफ्टवेयर बाबत हकीकतन जो जायजो वी। कमेटी मरीजन के रेफर कर मखसूस निजी इदारे के फायदो पहुंचाने वाले मामले जो भी जायजो वी रिपोर्ट वज़ीर आज़म के पेश कंदी।

पाकिस्तान ऐं मलेशिया जो दहशतगर्दी मनशियाती रोकथाम ऐं इंसानी स्मगलिंग ख़िलाफ़ गडि॒यल सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मलेशिया जे घरू वज़ीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल जी मुलाक़ात। सिक्योरिटी जे शोबे में सहकार वधाइण ते बि ज़ोर भरियो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान शयुनि जी मलेशिया में मार्केट ताईं पहुच ते ज़ोर भरींदे चयो त मलेशिया में चांवर, पटाटनि, कणक ऐं जानवरनि जी खु़राक जी तलब मौजूद आहे। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी बि मुलाक़ात में मौजूद हो।

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो बरसात नए बोर्ड दौरान फौत थी वेलनि खानदाननि जी मदद ऐं तबाह थी वियल घरनि जी ॿीहर तामीर जो हुकुम। इम्कानी बरसातनि ऐं बोर्ड जे नुक़सान बाबति थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारां बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि में बिजली ऐं रोड रस्तनि जी बहाली लाइ बि क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त मुल्क जे मुतासिर इलाइक़नि मां बोर्ड मुतासिरनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वधीक बरसातनि ऐं इम्कानी बोर्ड सबबि NDMA ऐं सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयार आहिनि।
1: पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निजाम था, चाहे आपके KMC हो चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM की राबता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलजाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलजाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राबता कमेटी में भी बैठे हुए। जो पब्लिक पार्क्स थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख ले, सारे MQM लीडर मिलेंगे आपको। जाती तौर पर शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए।
0: वजीर शजील नाम अहमद चयो आहे त कराची जे मसलनि जे ज़िमेवार MQM आहे। हिकु साज़िश ते हड़तालूं करे सनअतनि खे तबाह कयो वियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जी हड़तालनि जी हिमायत वारियूं वीडियोस अॼु बि मीडिया वटि मौजूद आहिनि। हिकु हिकु हड़ताल दौरान 30, 40 ऐं 50 ताईं लाश खया वेंदा हुआ। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शजील अहमद चयो त नफ़रत जी सियासत कंदड़ जमायतूं पंहिंजे ई सूबे खे बदनाम कनि थियूं। कराची जा मसला हल करण लाइ मस्बत ऐं ज़िमेवारणी सियासत जी ज़रूरत आहे। PP हमेशह क़ौमी मफ़ाद खे अवलियत ॾिनी आहे। सिंध जा माण्हू बाशूर ऐं समझदार आहिनि। उहे ॾिसनि पिया त हर ॾुखे वक़्त में केर साणन गॾु बीहे थो। सिहत वारे फाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त सूबे जी ॻाल्हि करण कुफर नाहे, तरीक़ेकार ते ॻाल्हि थी सघे थी। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे मुस्तफ़ा कमाल चयो त हीउ निज़ाम 70 सालनि खां नौजवाननि खे गद्दार बणाए रहियो आहे। हालतनि खां तंग थी माण्हू हथियार खणी जबलनि ते वञी वेठा आहिनि। आइन में सूबा ठाहिण जो तरीक़ो दर्ज आहे। आइन में 27 तरमीमूं थी चुकियूं आहिनि, जंहिंजो मतिलब आहे त आइन में खामियूं मौजूद हुयूं। कराची वासी पाणी ख़रीद करे पी रहिया आहिनि। वज़ीरनि ऐं आफ़िसरनि जा टैंकर हली रहिया आहिनि।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
4: मोर को दिल्ली राणा, मोर को
3: दिल्ली आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
7: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
8: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
9: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321 2300। कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
11: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
12: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
13: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
12: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
13: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
12: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
13: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
12: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
13: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
14: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
9: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
14: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
14: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
14: 03125257 86।
9: जी हा 2315-2576।
14: GAFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी। जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उगरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
6: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
7: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे
8: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125257 86
5: जी हा 3135255786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम। छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: ट्रेंड के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3443-842।
5: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और पूरे मुल्क की जो उम्मीद है उसका महवर आज सुप्रीम कोर्ट है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पाकिस्तानी कौम और आईन और कानून के मुताबिक, कौम की ख्वाहिशात आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। जो तोहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाजे है, अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गाड़ी जिसके गिर्द पुलिस का पहरा था, पूरा काफिला अडियाला से गया शिफा इंटरनेशनल, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, कोई रश नहीं था, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ डॉक्टर कैसम सुल्तान को लेकर गए और फिर वो वापस भी आया काफिला। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पर झूठा है कि हाँ, तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। उसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। तो ये हमारी जद्दोजहद और आज जो हमने पिटिशन दाखिल की है उसी जद्दोजहद का हिस्सा है।
2: पीटीआई वानी जी अस्पताल मुंतकली बारे हुकम की मुबैना वचगड़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराए छी। जिम्मेवार के तोहीन अदालत को जिम्मेवार करार दियण, पीटीआई वानी के फौरी तौर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण संदस तिबी मायनो करण की इस्तदा। उजैर भंडारी सलमान अकरम राजा पारा दाखिल कल दरख्वास्त में वजी अजम शहबाज शरीफ, कानून वाले वजीर आजम नजीर तारण, सुध समा वाले वजीर अताउल्ला तारण के धुर बनाए वो। दरख्वास्त में सजा कई वही है त अदालती हुकुम से अमल न कदड़ जिम्मेवार के जाती हैसियत में तलब पे वे खेन तोहीन अदालत को जिम्मेवार करार दई सदन खिलाफ कानून मूजिब कार्रवाई कई वे।
3: जो ये कैदी साहब जो हैं, जिनके हवाले से ये ऑर्डर आया, ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इकतदार थे तो ये बताते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। अब कंटेम्प्ट, एक कंटेम्प्ट जरूर हुआ, वो कंटेम्प्ट किसने किया और कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा कि आप सियासत नहीं करेंगे फिर रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर, ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, रुकावट भी खड़ी की और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसमें भी रखना डाला गया, तो ये वायलेशन और कंटेम्प्ट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने। तो जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो वह शाश बशाश है।
2: वफाकी हुकूमत पीटीआई वानी जी अस्पताल मुंतकली बारे मामले में तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजगड़ी को जिम्मेवार करार दई छो। वफाकी वजीर अताउल्ला तारण प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है त शिफा इंटरनेशनल अस्पताल बहरा टोलन की सूरत में मानू जमा किया वह, पीटीआई जब मानू सिक्योरिटी रिस्क बणजी वह, तेकर वानी के पिम्स अस्पताल नियो वो। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जहां डॉक्टर्स मौजूद हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट सेहत मामले से सियासत कर मना न कर हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान दई अदालती हुक्म की भजकड़ी कई वही, तो इन अदालत हुकूमत न पर पीटीआई बानी की भेण गर्भाती पार्टी कई। अदालती हुक्म से अमल कदे पीटीआई बानी जो तिबी मुआइनो कराए वो, तिबी मुआइने वक्त पीटीआई बानी की भेण पिण मौजूद हुई। सेहत के मामले के सियासत की वर न चढ़ो वे। इस्लामाबाद इंतजामिया पीटीआई वानी जी अस्पताल में तकलीफ बाबत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खिलाफ नजरसानी अपील जल्द बुधर लाए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराए छी। दरख्वास्त में पीटीआई वानी जी अटियाला जेल मां निजी अस्पताल में तकलीफ मेडिकल पैनल जरिए संदस इलाज कराने वाला हुक्म चैलेंज किया गया है। वफाकी हुकूमत रावलपिंडी में 6 महीने लाए फौज मुकर्र करण की मंजूरी दई छी। नोटिफिकेशन मूजिब रावलपिंडी में फौज मुकर्र करण की मंजूरी आईन जी आर्टिकल 245 तहत डिनी वही। पाक फौज 2 कंपनियों 6 महीन तीन रावलपिंडी में मुकर्र हूंद। जारी कल पधराई मूजिब फौज जिले इंतजामिया से घट अमन अमान की सूरतहाल बरकरार रखंदी। शहर के सास हंधन अहम रोड रस्तन से सिक्योरिटी के इंतजाम के असायतो बनाया वो। फौज मुकर्री की मंजूरी बाद जे घरू खाते की दरख्वास्त दिनी वही। पाकिस्तान ने मलेशिया जो दहशतगर्दी मनशिया की रोकथाम इंसानी स्मगलिंग खिलाफ वडियल सहकार बढ़ाने के इतफाक। सदर आसिफुद्दीन ज़रदारी से मलेशिया के घरू वजीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में सहकार बढ़ाने से भी जोर भर वो। सदर आसिफुद्दीन ज़रदारी पाकिस्तान शेयर की मलेशिया की मार्केट्स तीन पहुंच से जोर भरीदे तो मलेशिया में चावर पटाटन कणक जानवर की खुराक की तलब मौजूद है। घरू वजीर मोहसिन नकवी की मुलाकात में मौजूद हो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो बरसात ने बोट दौरान फौत थी वन खानदान की मदद ए तबाह थी वल घर की बीहर तामीर जो हुकम। इम्कानी बरसात ने बोट के नुकसान बाबत थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारा बोट मुतासिर इलाकन में बिजली ए रोड रस्तन की बहाली लाए भी कदम करण की हिदायत। वज़ीर आज़म के ब्रीफिंग में बुधाया वो तो मुल्क के मुतासिर इलाकन में बोट मुतासिर के महफूज हंधन डां मुंतकिल वे। बरसात ने इम्कानी बोट सबब एनडीए में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो टीमों मदद लाए तैयार आई।
0: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
5: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज मुअस्सर बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
6: छा तव्हां जोड़न जे सूर पुठन जी तकलीफ कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी जिंदगी।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि थे में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
11: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
12: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
11: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
12: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
11: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
12: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
11: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
12: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
9: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
9: जी हा, 231-25-25-786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकर तवां के मैदे की तकलीफ, सीने की जलन, खट्टियों उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण की जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे की खराबी और हाजमे के मसलन लाए आजमूदा और फायदेमंद कोरस है। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हरा चर ते सुबुह जो 9 वगे का शाम जो 5 वगे तई, हमजा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते के लिए फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।